पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
6: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: गाड़ियों है तेहरान ट्रीडियन लाए एतमादी बहाली चाहे तो अब मखरबस में महफूज सफर लाए 30 कैम कर चरिया है।
4: कि जो भी इस वक्त मेहनत कर रहा है जंग बंदी के लिए अमन कायम करने के लिए तो वो अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। मुसलसल अमन होगा तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। खास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है उनका मेहनत वजीर आजम साहब का मेहनत उनका पूरा टीम का मेहनत हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है।
3: वजीर आजम फील्ड मार्शल ईरान जंग के खात्मे लाइ कोशिशन में रुधल आहिनि। इसराइल अमरीका जंग की कीमत समूरी दुनिया अदा करे पई दुआगू आयूं तो जंग खत्म थिए आवाम जो मुआशी मुश्किलातूं घट थियन जंग खत्म न थी तो हालतूं वधीक खराब थींदियूं। कराची में तकरीब के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त अमन लाइ कम कंदड़ अलाह अलाह कम कर रहा आहिनि। अहसास आहे त आवाम मुआशी मुश्किलात जो शिकार आहे आवाम खे हर मुमकिन रिलीफ ॾियण जी कोशिश कयूं पिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन चइनि ॾींहनि जे दौरे जे पहिरें मरहले में हांगड़ो रवानो। वजीर आजम हांगड़ो में आज़ीचांग सूबे जे पार्टी सेक्रेटरी सां मुलाक़ात कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल अता तारण ख़ासि मामन तारक फातमी ऐं आई टी वारे वज़ीर आशिज़ा फातमी बि वज़ीर आज़म सां गॾु मौजूदु। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी कंपनियुनि जे सी ओ सां बि मुलाक़ातूं कंदो। लाड़काणे में टिकटॉकर नारी जो पंहिंजे माउ ते बदपेशो कराइण जो इल्ज़ाम। एसन कॉलोनी जे रवासिण टिकटॉकर इकरा उर्फ महक मस्तोई जो मासूम जी सुमत एहतजाज नारी चयो त माउ ऐं मुंहिंजे वालिद खां तलाक वठण बाद असांखे पाण सां गॾु रहायो ऐं ॿी शादी कई। वेगे पीउ बि आय जे नशे में मूंसां ज़्यादती जी कोशिश कई। माउ पंहिंजे चाहींदड़ सां बदपेशो कराइण लाइ ज़ोर भरियो ऐं इनकार ते हुन मूंखे मासूम धीअ सुमत घरां कढी छॾियो। अमर चाहींदड़ सां गॾिजी मौतमार धमकियूं ॾेई रही आहे। ऐं घोटकी वेझो मज़दा कल्टी थियण सां 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। घोटकीअ खां कोयटा वेंदड़ पठान ब्रादरी जा माण्हुनि जी मज़दा कल्टी थी पई। हादसे में ॿारनि ऐं औरतुनि समेत 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। 8 जी हालत ॻणती जोगी ॿुधाई पई वञे।
5: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। महिरबानी करे एहतियाती उपाउ वठो। बिना ज़रूरत जे घर खां ॿाहिरि न निकिरो। ॿाहिरि निकिरण वक़्तु कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का ढिलो ऐं हल्के रंगनि वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां आवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
8: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गरमाइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक, बरोज जुम्मो 12 AM तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक्त सुबुह 11 खां शाम 4 AM ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.
0: Yeah.

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया, खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश।

0: के बाद हम तुम्हारे नहीं रहे,
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 12 PM. This line check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: प्लान बी मौजूद आहे मुआदो थियो त आमने हुरमस खुली वेंदो ईरान सां डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे ईरान अमरीका जे मुतालबनि खे अमन ॻाल्हियुनि में सभ खां वॾी रंडक करार ॾेई छॾियो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकचीअ जो गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल सां फोन ते राब्तो अब्बास इराकची चयो त अमरीका माज़ी में अधूरनि वाइदनि ऐं फ़ौजी हमलनि ज़रिए सफ़रतकारी खे नुक़सान पहुचाईंदो रहियो आहे तेहरान पाकिस्तान जे सालसी में अमन ॻाल्हियुनि में संजीदगी सां हिसो वठी रहियो आहे एंटिव गोथरस सफ़ारती अमल जारी रखण ते ज़ोर भरियो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चीन जे टिनि ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते बीजिंग रवानो वज़ीर आज़म चीनी सदर वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो मुलाक़ातनि दौरान पाक चीन लाॻापन समेत ख़िते सूरत हाल ऐं अमुन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जे सालसी वारनि कोशिशुनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वेंदी

0: देखिए ड्रामा सीरियल एक भूल रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो जेको आलम लए रहमत महबूब खुदा जी सिफत हो जेको आलम लए रहमत महबूब खुदा।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News. GAFM नेटवर्क पर
3: अब्दुल मालिक द्रोही ऐं माणिक द्रोही जे धुरन महिलंदड़ तकरार जरगो थियो. अब्दुल मालिक धुर मथां हिकु खून ऐं हिकु ज़ख़्मी खे ज़ख़्मी करण जो ॾोह साबित थियण ते 90 लख ॾंड मुक़ररु कयो वियो. 2 साल अॻु ज़मीनी तकरार तां जेड़े में पढ़ियल द्रोही क़तल थी पियो हो. हिकु ॼणो ज़ख़्मी थियो. न्यू सदाबाद में 2 साल अॻु क़तल थियल नौजवान बादशाह अपड़े जो क़तल जो जरगो थियो. ॾोह साबित थियण ते जवाबदार धुर मथां 96 लख ॾंड मुक़ररु. मोहम्मद ख़ान जुड़े जो सरपंचीअ में ॻोठु शानाबाद जुड़े जो में जरगो थियो. नौजवान जे क़तल जो ॾोह 3 ॼणनि ते साबित थियो. जवाबदार यासिर काका, मुश्ताक काका सेंट्रल जेल हैदराबाद में क़ैद आहे. हिकु जवाबदार दानिश मलिक रूपो शाह जवाबदार धुर 3 महीननि अंदरि धुर जे ॾंड जी रक़म अदा कंदी, जंहिं बाद मक़तूल जा वारिस राज़ीनामो जमा कराईंदा. लाड़काणे में पेट्रोल जे सॾु ते आईबीए टेस्ट पास उस्तादनि जे मुतालबनि जी मञता लाइ एहतजाज. पघारनि जी बंदिश ऐं ॿियनि मुतालबनि जी मञता लाइ प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल बि कई वई. अॻवाणनि चयो त गुज़िरियल 15 महीननि खां उस्तादनि जूं पघारूं जारी न आहिनि कयूं वयूं. ईद अचण वारी आहे, पघार जारी कई वञे. दड़ो में पाणी जी खोट ऐं शाखनि जे खाटी न थियण ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो. बिजारी केनाल मां निकिरंदड़ राजवाह में पाणी जी खोट ऐं खाटी न थियण ख़िलाफ़ आबादगारनि एतराज़ कयो. आबादगारनि चयो त पाणी न मिलण करे फसल तबाह थी रहिया आहिनि. पाणी फराम करे परेशानी ख़तमु कई वञे. ऐं शहदादकोट में सिंध तरक़ी पसंद पार्टी पारां स्कूलनि जी बंदिश ऐं मंदिचार जे वेकरे ख़िलाफ़ एहतजाज. कारकुननि सब्जी मंडी खां रैली कढी कोटो मोटो चौक ते धरणो हयो. अॻवाणनि चयो त ज़िले अंदरि पुलिस जी सरपरस्ती में सरियाम मंदिचार जो विकिरो जारी आहे. हुकूमत नोटिस वठे मंदिचार बंदि कराए.

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हां, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
2: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाइ खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। ॾींहं जो तमाम गरम वक़्तु सुबुह 11 खां शाम 4 वॻे ताईं उस खां पासो करियो। गर्मीअ खां बचाउ तव्हां जे एहतियात में आहे। पंहिंजे ऐं पंहिंजे प्यारनि जी हिफ़ाज़त करियो ऐं ॿियनि खे बि ॼाण ॾियो। हीउ पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाहीअ जे लाइ पेश कयो वियो।
3: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे हैं
3: जी ए एफ एम
2: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जिस स्किन में मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए। आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सबनी समाधान छो मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। पुरकुलू दो के संबंध है शादों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आसे कल तक इस बाजे शाम तक दिन से रात नीचे जाकर समी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तारों तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहराबपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप सब लोगों का प्रोग्राम जिसमें आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आप इस्तेमाल करेंगे खूबसूरत हो जाएंगे और बहुत ज्यादा वाली खूबसूरतियां हासिल करते जाएंगे। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसे फर्क है, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊंगी इस पूरे प्रोग्राम में, और आपने क्यों इस्तेमाल करना है ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए प्रोग्राम में, प्रोग्राम को सुनते रहिए, एंजॉय करने के साथ साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें मिल रही है मालूम जो कि आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल सुना प्रोग्राम में यहाँ पर बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रवेश एंड टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम में। आप प्यारे प्यारे लिसनर्स को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है और इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि हमारे पास 2 घंटे होने वाले हैं मेरी जान। तो इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करने वाले हैं। तो 2 घंटों में आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, प्रोग्राम में मैसेजेस होंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के कमेंट्स होंगे, प्रोग्राम में आप लोगों के कॉल्स ली जाती है और बहुत कुछ होता है जिससे आप लोग हमारे साथ साथ कनेक्ट रह सके। ओके जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्राली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगाज से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगाज से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो हम ऐसा करते हैं कि ये कलाम लगा लेते हैं जी प्रोग्राम में और कलाम के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। आपका हमारा साथ पूरे 3 बजे तक सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। Yeah.

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. बिल्कुल जी प्रोग्राम है और प्रोग्राम में आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स में आप लोगों के व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है. तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे बताइए जल्दी से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का इरादा है आप लोगों का और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे मार्केट तो हम पक्का लेकर आएंगे. और ये भी हमें बताइएगा साथ साथ जो है ना ईद भाई बिल्कुल करीब आ चुकी है तो ईद की तैयारियां चल रही हैं. बिल्कुल खवातीन जो हैं वो सफाइयां करने में बड़ा मसरूफ हैं आजकल. देखा जाए तो लोगों के घरों में बकरी आना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ लोगों के घरों में बकरी काफी टाइम पहले आ चुके थे लेकिन कुछ लोगों के घरों में अभी आना जो है ना वो स्टार्ट हो चुके. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई हमसे काम नहीं हुआ जाता और बकरी जो है वो उनकी सफाइयां होती हैं, उनका बड़ा काम होता है. तो बकरी जो है ना वो थोड़ा वो ईद के कुछ दिन ही बचते हैं तब जाकर वो लेकर आते हैं बकरा की शॉपिंग करके आते हैं. ये भी जेंसीज की बोलिया. ओके सो अज जी को माइनस सभी चीजों के ॾिसी करे टॉपिक सोचो आहे. सो टॉपिक अज मां आवांगा इहो पुछंदमि त जैसे जैसे भई ईद जा ॾींहं करीब ईंदा आहिनि ऐं घरनि में जेको आहे न कमु वधी वेंदो आहे, सफ़ायूं हूंदियूं आहिनि या वरी अगरि बकरा तव्हांजे घर में अची चुका आहिनि त बकरनि जो बि इलाही सारो कमु वधी वेंदो आहे. त तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हांजे घरनि में जेके कमु वधी वेंदा आहिनि ख़ासि करे ईदनि जे मौक़नि ते ऐं हिन वार ईद जो कमु त मूंखे लॻंदो आहे कुझु ज़्यादा हूंदो आहे, सवायो हूंदो आहे. ईअं हूंदो आहे न त मूंखे तव्हां इहो ॿुधाईंदा त कम खां बचण जे लाइ तव्हां कहिड़ो घर में बहानो कंदा आहियो जेको तव्हांखे लॻे त बाबा ही बहानो करे मां बची वेंदा पंहिंजे घर वारनि खां. हिकु त गर्मी बि ॾाढी आहे, इहा बि ॻाल्हि तव्हां पंहिंजे ज़हन में रखो. गर्मी जे बावजूद बि अगरि तव्हांजा घर वारा तव्हांखां इलाही सारो कमु कराईंदा आहिनि त पोइ तव्हां घर वारनि खां बचण जे लाइ कहिड़ा बहाना ठाहींदा आहियो इहो तव्हां अॼु मूंखे ॿुधाइण वारा आहियो. उन सां गॾोगॾु अगरि तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियणु चाहियो था त पोइ तव्हां छा कंदा बाबा, अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जी, उसको आपने फॉलो कर लेना. और पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की जो ना वो लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए ताकि लोगों को पता चले कि भाईजान हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है. और प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें आप लोगों को व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोग करने वाले हैं और जबकि देखा जाए तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे पास भी ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनका इस्तेमाल करें बस इस्तेमाल करने के बाद हमें खूबसूरत जो है ना वो रिजल्ट मिलता जाए. तो ये मिल जाएगा जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 03-15-799-0595. ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाए, वहां से जाकर इजीली आप परचेज करते रहिए क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए है. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एज का फेस वॉश है जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है. उसके बाद व्हाइट एज का ना जो साबुन है वो भी है और उसके अलावा व्हाइट एज की लवली क्रीम है. व्हाइट एज की लवली क्रीम तो भाई आप लोगों के लिए ऐसा समझे गेम चेंजर वाला काम करेगी आपकी स्किन के ऊपर. अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते, मेकअप से दूर भागते हैं या फिर गर्मियों में आपसे मेकअप होता नहीं है तो व्हाइट एज की लवली क्रीम बस आप परचेज कर लें, अपने पास रख लें. ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट होने वाला है. और इसके अलावा अगर गर्मियों का सीजन आ जाता है और आपके चेहरे पर एक्नी भी आ जाते हैं तो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब है जो कि एक्नी क्लियर वाला ट्यूब है, डॉक्टर पिंपल नाम से अगर आप परचेज करते तो आपको इजीली मिल जाता है. ये भी ट्यूब आपके चेहरे की एक्नी को खत्म करने के लिए बनाया गया है.

0: हमारे साथ हैं जी, वेलकम करते हैं। और जीशान अली राहू जा हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान भाई आपको भी वेलकम हो। किशोर भाई के हुए फिर इसके साथ हमें, मुझे ऐसा लगता ऐसा फील हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दिनों से प्रोग्राम करने नहीं आई, लेकिन नहीं भाई, सिर्फ मैं कल का दिन ही नहीं आई थी। और उसके अलावा जो बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है, बस आप ही हमारे साथ मौजूद रहेगा, प्रोग्राम सुनते रहिए और खूबसूरती के राज जो है ना वो जानते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है खूबसूरती के राजों को जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टाइम हो जाता जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो बस बनी रहिए हमारे साथ। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड द स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड द स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।
1: It's 1:30.

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड एज इन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो वाइट एज एंड एज इन ब्यूटी शो आप लोग सुन रहे हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एज इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर हम यहाँ पर बात करें वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो भाई बिल्कुल बात की जा सकती है और क्यों ना की जाए, क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जब आप मार्केट जाएं तो आप लोगों के जहनों में एक ही बात हो कि हम अगर मार्केट जा रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट्स कौन से परचेज करने हैं। तो जब आप मार्केट जाएं तो आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, अपने गोठ में अवेलेबल कराना चाहते हैं, सिटी में अवेलेबल कराना चाहते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। उसके लिए आपके पास नंबर मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर आप रब्ता कर सके, बता सके कि आप जो हैं वो अपने करीबी जनरल स्टोर पर, अपने गोठ पर, अपने सिटी में जो है ना अवेलेबल कराना चाहते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप कहीं दूर दराज जाएं नहीं लेने के लिए। उसके लिए बस आप डायल करते हैं 03-15-799-0595। ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और उसके साथ साथ उन्हें बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन से सिटी से शो सुनते हैं, ताकि आपकी आसानी के लिए आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दिए जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनाब ये एवोकाडो, उसके अलावा एलोवेरा एंड मिल्क से तैयार शुदा, ये तीनों चीजें मिलाकर वाइट एज ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। और वाइट एज ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से जो है ना कि स्किन जो है वो खूबसूरत होती है, और वाइट एज ब्यूटी क्रीम जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द को नरम, मुलायम और ताजा बनाती है। इसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं वाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो आपके चेहरे की जो खुश्की होती है, दाग धब्बे होते हैं, फिर उनकी होती है, सारी चीजें कम हो जाती है। और जनाब वाइट एज ब्यूटी क्रीम में शामिल है खास अज्जा जो आपकी जिल्द की जो है ना हिफाजत करते हैं, और कुदरती आपकी जिल्द में खूबसूरती भी लाते हैं, और आपकी खूबसूरती जो है ना वो और ज्यादा बढ़ती जाती है अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत, फ्रेश और ग्लोइंग लुक देना चाहते हैं, तो आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रोजाना। अच्छा, तो रोजाना जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना वाइट एज ब्यूटी क्रीम का, तो उनके लिए ये चीज़ है कि भाई आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि आप अगर अपने चेहरे पर कोई भी अच्छा प्रोडक्ट लगाते हैं तो थोड़े दिन तो आप लगाएंगे, जब भी आपको अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा ना, तो थोड़े दिन आप लगाइए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भाई आपके पास वाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश है, और विटामिन सी का ये फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है और एंटी एजिंग के लिए भी है। तो वाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके चेहरे पर जितने मसाले वो सारे दूर हो जाएंगे। साथ साथ अगर आप फेस वॉश नहीं लगाते, साबुन लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी टेंशन की कोई बात नहीं है, वाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है। और वाइट एज का ब्यूटी सोप भी आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, फ्रेश बनाता है, फेयर बनाता है, आपके चेहरे की स्किन को जो ना निखारने के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी से तैयार शुदा है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ साथ जो लोग एक्नी की वजह से काफी ज्यादा वाला परेशान है, एक्नी को भगाना चाहते हैं, एक्नी को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम है। दरअसल ये एक ट्यूब है, और ये ट्यूब आप जब परचेज करते हैं तो आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल जाता है, जब आप नाम लेकर तलब करते हैं। तो डॉक्टर पिंपल का ये एंटी एक्नी का ट्यूब आप परचेज कीजिएगा, जो कि आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार शुदा है। उसके अलावा ये आपके चेहरे की एक्नी से लड़ाई करता है, फाइट करता है। आपके चेहरे पर अगर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्नी आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपके चेहरे पर खत्म होती है वो ये होती है कि भाई आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद आपके चेहरे की स्किन क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। आपके चेहरे पर अगर एक्नी हो तो वो भी खत्म हो जाते हैं, एक्नी के निशाना तो वो भी खत्म हो जाते हैं, और आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत होने लग जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके चेहरे पर एक्नी आ जाते हैं, और एक्नी की वजह से आपकी रंगत अगर गोरी भी होती है तब भी आपकी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी अजीब सी लग रही होती है। तो एक्नी को खत्म करने के लिए, एक्नी को कंट्रोल में लाने के लिए आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है। आपके चेहरे के एक्नीज हो, एक्नी मार्क्स हो, किसी भी तरह का एक्नी हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। ब्लैक पॉट्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर जमा हो जाती है, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपके चेहरे की स्किन चमकना, दमकना और खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। लगाने के तरीके कार बिल्कुल भी आसान होते हैं। जैसे आप रात के टाइम कोई भी ब्यूटी क्रीम लगाते हैं,
तो अगर आप डॉक्टर पिंपल का ट्यूब लगाना चाहते हैं तो रात के टाइम आप इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ी बेस्ट टाइमिंग होती है रात की। अगर आप अपना फेस वॉश क्लीन करते हैं, अच्छे से अपना फेस वॉश करते हैं, हाथों को भी अच्छे से क्लीन कीजिएगा, हाथ भी आपके क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जब आप हाथों से ही अपने चेहरे पर लगाते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट, तो आपके हाथ भी क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हाथों पर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, अगर वो आपके फेस पर आ जाते हैं, अगर आपके स्किन पर एक नहीं होते हैं तब मसले बनाए स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपने हाथों को भी अच्छे से क्लीन रखा करें, अपने फेस को भी क्लीन रखा करें, उसके बाद डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब आप अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, जहां पर एक नहीं हो वहां वहां पर लगाइए, या फिर जहां पर आपके निशानात हो वहां पर लगाइए, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कितने सारे ऐसे निशानात, कितने सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आप अगर अपने चेहरे पर लिए फिर रहे तो आपने डॉक्टर पिंपल का ट्यूब तो लाजमन लगाना है। ये सर्दियों में तो वैसे ऐसा होता है कि लोगों के चेहरे पर एक्नी कमी आते, लेकिन गर्मियां जैसे आ जाती तो एक्नी भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो ना अंब खाने से भी एक्नी निकलता है, यो सिंधियुनि जो लॉजिक आए बिल्कुल ये थी सके। तो पर तव्हां एक्नी अगर नथा चाहियो पंहिंजे चेहरे ते, त तव्हां डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब इस्तेमाल कयो, तव्हांजे चेहरे जा एक्नी खत्म थींदा, पोइ तव्हां इज़ीली हर शइ खाई भी सघो था ऐं तव्हां पंहिंजी स्किन खे खूबसूरत थींदे भी ॾिसी सघो था। सो बिल्कुल तव्हां इस्तेमालु कंदा हलो, ऐं अगरि तव्हां पंहिंजी स्किन ते मेकअप नथा यूज़ करे सघो छो त गर्मी ॾाढी आहे, त तव्हां वाइट एज जो लवली जेका क्रीम आहे न, वाइट एज जी लवली क्रीम रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयारु थियल आहे जनाब। हिन में टीह वाइटमिन जा कैप्सूल मौजूदु आहिनि, वाइटमिन B3, वाइटमिन ई, वाइटमिन सी, वाइटमिन डी, खोट सारा वाइटमिन्स जेके तव्हांजी स्किन जे अंदरि तव्हांजी स्किन खे ज़रूरत हूंदी आहे वाइटमिन्स जी, उहे सभु पूरा कंदा। हुन सां गॾो गॾु सनस्क्रीन बि एड थियल अथसि। तो वाइट एज जी लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए कजो, ही तव्हांजी स्किन जे लाइ आहे। तव्हां सुबुह जो बि इस्तेमालु करे सघो था, राति जो बि लॻाए सघो था, कोई बि एज लिमिट न आहे, तव्हां हर एज में लॻाए सघो था। बसि पंहिंजी स्किन खे वॉश कयो, उन खां पोइ अच्छे तरीक़े सां पंहिंजो चेहरो सुकायो, उन खां पोइ वाइट एज लवली क्रीम जो थोरो मक़दारु खणी पंहिंजे चेहरे ते लॻाए छॾियो। तव्हांजी स्किन जेको आहे न ग्लो बि अची वेंदसि, ऐं तव्हांजी स्किन जेका आहे न सफ़ा ख़ूबसूरत लॻंदी, ॼण तव्हां कोई मेकअप कयो आहे। सो जेके माण्हू इहे चाहिनि था त बाबा असां अहिड़ी गर्मी में मेकअप नथा करणु चाहियूं, शादियूं आहिनि या फिर ईद आहे मथां, त न सभिनी जे लाइ वाइट एज जी लवली क्रीम त सफ़ा बेस्ट अथव। लाज़मी लॻायो, सभु लॻायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो, मर्द मायूं सभी हणो, सही आहे। उन सां गॾो गॾु तव्हां बिल्कुलु अगरि पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त पोइ तव्हां डायल कंदा 03-15-799-0595 03-15-799-0595। ही नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था। किथे मिलंदा प्रोडक्ट ऐं किथे नथा मिलनि ॿुधायो त मूंखे ख़बर त पवे।

प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावों से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है बिल्कुल जी आपके मैसेजेस की जाने बातें हैं और क्या कह रही हैं ये भी देखते हैं। क्या यार क्या यार पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। अच्छा चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम बेटा सिद्धू हाउ आर यू हो फाइन बेटा सिद्रा मुस्कान जी जी मैं सफा भली ताम उदय किया हालार हमारे साथ मौजूद है। हालार भाई वालेकुम अस्सलाम और एसन अली अरबानी वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजे केसिया वेलकम दिल से व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में आपको भी वेलकम खुश आमदी। उदास लड़की कहती हेलो ओपा ब्यूटीफुल शो ब्यूटीफुल मी एंड सो ब्यूटीफुल यू थैंक यू माय ओपी। आशिक अली जलबानी हमारे साथ मौजूद है। हेलो हिदायतुल्लाह कहते टॉपिक वैसे घर वालों से बहाने चलते तो नहीं लेकिन मैं तो कह देता हूँ मेरे चप्पल में अच्छा मेरे चेल में सूर्य अच्छा लगा चप्पल में बताने क्या होगा चले वैसे अच्छा बहाना है चेल में सूर्य अच्छा निदा कहती है ये टॉपिक मैं तो काम करती नहीं जवाब क्या दूं अब ये भी ना हो तो आने कोई ना कौन तो कोई काम तो जरूर दवा करना होगा। अब्दुल रजाक जरदारी भाई हमारे साथ मौजूद है वेलकम। आदिल कहते हैं ये सॉन्ग हाँ जी बिल्कुल आपका गाना लगा देगा थोड़ा सा सब्र कीजिए

चाचा खालिद कहते हैं कि कम कोने कमल है ब्याह मानू आहेन मेड आहे रखेल सडी कम सडियो कम व्हाट्सएप ते योर टॉपिक आंसर ओके ओके चाचा मतलब ताने तरक्की अच्छी हुई है सही सही प्रेमचंद हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम और ये महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे थैंक यू वेरी मच महर इरफान सियाल साहब को वेलकम कहा जाता है और किशोर भाई कहते टॉपिक यदि मुख्य बहानो करण की जरूरत न पवंदी है अगर मना करे छड़ी तो करे छड़ी अल्लाह डोंट जो बोल दिया सो बोल दिया ये सफा अच्छा सुमाटो गोपांग हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कंबर सिटी से आप हमारा शो सुन रहे थे उस दिन आपने बोला मुझे याद दिलाना सॉन्ग जी जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया सो आप अपना गाना एंजॉय कीजिए और उसके अलावा हेंजी जहीर अब्बास वालेकुम अस्सलाम कहते ओ माय फेवरेट आरजी आप कैसी हैं मैं ठीक आप बताएं आप कैसे हैं दर्दे दिल आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम स्वीनी किशोर भाई बिल्कुल ऐसी बात है यह गाल तवा के जहन में छूना आई हुई

अच्छा नूर हुसैन दुनियो भाई हमारे साथ हैं फ्रॉम समंदर पार. अच्छा अच्छा चलो यानी तुम असा के बुधो पया सो मोहब्बत उन पेरे भाज और ये हैं जी किशोर भाई के तौबा तक जे न तो एतरो याद रखी तो या लिखी रखनो याद हुंदो है याद या वरी मुझे कड़ी आदत होंदी मां दिसी जका से मतलब पढ़नी ना वार मुका पढ़ी ना में याद बाबा यो सानो ज़हन तब. और निदली कहती एक दिन उसने मुझसे कहा क्यूट बन के दिखाओ फिर मैंने उसके

अच्छा मां अञा ताईं वेठी सोचां थी न खिलणो हो इन ते छो त ॻाल्हि थोरी सम्झ में न आई भाई अगर ऐसा कोई सवाल आपसे करे तो आप उन्हें सीधा सीधा बोल लीजिएगा कि आप जो है ना व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स लगाइए भाई। बात इतनी सी है कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं जिसमें आप लोगों के लिए व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम मौजूद है, व्हाइट एज का फेस वॉश है, सोप है, व्हाइट एज की लवली क्रीम है, बाबा वाह वाह, आई डॉक्टर पिंपल जो ट्यूब भी आए जो फुल डॉक्टर की तस्दीक से तैयार थियल है, यानी कोई भी अड़ी चीज इनमें एड थियल ना है जो तुम सोचो तो बाबा लगायो या न लगायो, बिल्कुल तुम लगा सको था टेंशन की गाल ही कोई।

अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हाथ साफ कैसे होंगे, हाथों में तो व्हाइटिश लवली क्रीम होगी ना, तो तमाम पेरेंट्स चंगे तरीके से पांजो फेस वॉश करे पो खन जो ना व्हाइटिश लवली क्रीम लगाने से लाइक वैसे मावरी थोड़ी है, मतलब मैं सोच नहीं आता धोने का पोई भी मुख्य लगता है तो मुझे आता साफ नहीं दे तो फाई जी मामले में थोड़ी साइको है यार लगंदो आ दरवाजो जो बंद कयो ना तो खराब थी यार अगर वाकई में घड़ी घड़ी होता तो मुख्य लगे तो मुझे सारी जिंदगी सिर्फ हथ धोने में गुजरी वेंदी।

अच्छा अच्छा, ये जानी जहांगीर भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है वाकई। करते दिल कहते हैं टॉपिक चंदा, अगर मुझे कोई काम बोल दे तो मैं कहती हूँ रुको मैं आती हूँ, फिर तुम शायद गायब हो जाती होगी। अच्छी बात है वैसे। अच्छा फरमाशो अज मुखे थोड़ी नजर आयो अन्या लगे थो तभी रस्ते में आयन, शायद जल्दी जल्दी फरमाइश कर अगते कम तुम थोड़ो खराब थे तुम फरमाइश न ली सकते। अच्छा हजार भाई भी आ चुके हैं। हजार भाई वालेकुम अस्सलाम, खुश आयो। अच्छा पोस्ट के लाइक एंड शेयर के नालो बिल्कुल बिल्कुल सफाई है, सोना सोना थी वेदा जडी तांगे खबर पन तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो तवाजे खूबसूरती जला केडो ज्यादा जरूरी है, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो तमा इस्तेमाल कयो आई डायल कयो 03-15-799-0595। उनका अलावा असा सगड मौजूद है फजीला, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। हाँ जी आपको भी वेलकम मेरी प्यारी जान, और आपको भी खुश आमदीद, आपने अपनी अम्मी जान और कायनात और सभी लड़कियों को सलाम दिया है। टॉपिक कहती अम्मी की छोटी सी जान, ससुराल की बड़ी बहू है, नो बहाना। हाँ जी ये वैसे सही बात है, अगर आप मायके में आगे बरसाइयां चल रही होती है ससुराल में आपको पता चलता है घड़े भी ऐसा हुआ। इंजॉय कीजिए भाई, और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, और उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। पूरे पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ प्रोग्राम व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो में।

0: अदा छा गाल आ डाडो परेशान पियो लगी
1: भाऊ छा कया बिन सालन खां अमड़ पथरीन जे मर्ज में मुब्तला है डॉक्टर ऑपरेशन जो चवन था मोटी इंदो आई हां
0: भाऊ मायूस न थी अज मा तोखे अल्लाह वारन इंसानन जो दस थो जा जिन पांजे अमर जे नाले ते एक खैराती इदारो ममताज वेलफेयर खोलियो है जे में मरीजन जी चकास ऑपरेशन मुफ्त में कन था
1: जी हाँ बा अखलाक बा किरदार इंसान दोस्त आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी ए संदस घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी
2: एमबीबी रखण ते जोर भरियो वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के टिन दिन के सरकारी दौरे से बीजिंग रवानो वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम बेन से मुलाकातों कदों मुलाकातों दौरान पाक चीन लागपन समेत खिते सुरतहाल अमन के क्याम लाए पाकिस्तान के साथी वार कोशिश के ख्याल की डे वट कई वी अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गियावाट अहदे ता इस्तीफा दे छड़ी फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौर मुकर थियल तुलसी 30 जून 2026 ते अहदो छड़ींदी अमेरिकी मीडिया मूजिब तुलसी ईरान जंग बाबत ट्रंप इंतजामिया का अलग मौकफ रखंदी हुई मेरठ के औरतन में पिंक स्कूटीज विराय रहा हूं औरतन के तरबियत लाइसेंस ए मुफ्त में स्कूटीज दियों पाया हैदराबाद में औरतन के पिंक स्कूटीज देने वाली तकरीब के खिताब कदे सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन तो सिंध हुकूमत वा मनसूबा डिना सूबे ए मुल्क की तरक्की लाए कम जारी रखासी केपी बनुवारे इलाके में पुलिस ए सीटीडी जो ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारजी व्या केतरा ही जख्मी 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बनाया वो पुलिस मूजिब कुछ इतलाते सीटीडी से गड ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन दौरान एक पुलिस अहलकार शहीद एक जख्मी भी थो एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी सईद मेमन के अगवा में कराची वासी अमाद के मुलसण से शक जाहिर कर छो डॉक्टर कादर मक्सी केटीन न्यूज से गालंदे तो सईद मेमन की बाजियाबी लाए कोशिशों वन की बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है सईद मेमन जो ब महीना पे दिल जो बायपास है तो जिंदगी के खतरो है सईद मेमन के कुछ ढी पे मुबैना तौर से बलूचिस्तान में अगवा किया वो है खैरपुर वेझो कोठाने जो अंबन के बाग में गलो कपियल लाश इतला पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल किया पुलिस मौजूद मकसूल मोहम्मद रमजान फुलकोटो नेवी में मुलाजिम है वाक्य बाबत जांच कर मीरपुर माथेलो भरसा समय जा बिरादरी के बिंदर में छेड़ो एक चिड़ो मारजी वो घोट मोहम्मद आलम चांडियो में जमीन की मालिकी तक जेड़ो थो लठियों में सुरटा लगन से अकबर समय जो कतल थी वो
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो जी हां हाने अवाजे पंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर से हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 का शाम 6 तक बरोज जुम्मो 12 तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-760
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो बाहर निकरण वक्त कंध आई जिस्म के ढकियो घणो पानी वापरायण जी आदत ठायो ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो हल्का ढिलो आई हल्के रंगन वारो लिबास पायण के तरजीह दियो ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स NDO आई स्टार नेटवर्क के तावुन सा आवाम जे आगाही लाए पेश कयो वयो
6: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.
4: इंडिया है.
5: इन्हन बिन्हन मसल
6: कार शोरूम ते नए नए पुराने गाड़ियों की खरीदो

सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88 नेफर्स। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड द स्किन ब्यूटी शो। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं, तो दूसरे घंटे में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बताया जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानना चाहते हैं? बिल्कुल जी जानना चाहते हैं, क्यों नहीं जानना चाहते? अगर आप नहीं जानना चाहते तो डी भी जोर तक बुधाई जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा केतरा फायदा है आई उए मानू मतलब बदनसीब आए जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल न कंदा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खपो तमा जे स्किन जे गाना वा खूबसूरत थींदी वेंदी, प्यारी प्यारी थी वेंदी, सॉफ्ट थींदी, ग्लोइंग थींदी, ये लगंदो तमा के नेचुरल बाबा असाजे स्किन में जेको ना खूबसूरती अचन शुरू थी वई है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तमा बिल्कुल जानीदा आयो तो वाइटमिनी बीट्स सा तैयार थियल आहे। उनका अलावा माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन भी अथस जनाब, सिर्फ तमा के रिजल्ट दींदी ब रातिन जे इस्तेमाल सा। अगर तमा ब रात इस्तेमाल कंदा आयो, अगर तमा लगायो था फेस वॉश करे प्रॉपर तरीके सा, तो तमा के बिल्कुल बिन रातिन जे अंदर रिजल्ट देण वारो प्रोडक्ट आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिल्द की खूबसूरती जो है ना वो ज्यादा बढ़ती है, आपकी खूबसूरती की हिफाजत होने लग जाती है और एक मयारी ब्यूटी क्रीम ऐसा लगता है कि आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे हमें कैसे मिलने वाले हैं। तो फायदे तो खैर आपको मिलेंगे लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर नुकसान बहुत ज्यादा छोड़ कर जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें जो कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार शुदा हो, आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, आप लोगों को हमेशा के लिए पाला पाला बना दे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस साबित होगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा जो है नरम मुलायम और तरोताजा हो जाता है और उसके अलावा आपकी स्किन में जो है ना वो खूबसूरती आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी जिल्द की जो बेरोनगी है ना वो भी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देता है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खुसूसी अज्जा जो जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं और खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं। तो रोजाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो कुदरती खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाती है। आपके चेहरे पर अगर निशानात हो, एक्नी हो, डार्क सर्कल्स हो, बहुत सारे ऐसे मसले जो कि आप चाहते हैं कि ये खत्म होने चाहिए, बिल्कुल जी खत्म हो जाएंगे, आप इस्तेमाल तो कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और साथ में आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन फेस वॉश जो कि आप लोगों को इजीली कहीं से भी मिल सकता है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार शुदा है जो कि आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना वो क्लीन करता है और आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है। डी स्किन का फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करते हैं ताकि स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, बटर की तरह स्मूथ हो जाती है, तो स्मूथ लाइक बटर हो जाएगा सीन। और इसके अलावा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ जब आप दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, रात के टाइम फेस वॉश कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, दो रातों के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरतियां हासिल करते जाइए और डायल करते जाइए 03-1579-0595 या भी गाल खबर पया तो तवा नंबर ते राबतो घट कयो पया, इन लाय तवा घट कयो पया, तवा घट छोथा कयो बाबा घट अगर तवा राबतो कना त अगलन मानन के किया खबर पंदी त किथे किथे अन्ना तई प्रोडक्ट अवेलेबल ना थियो। सो तवा सीरियस थियो इन नंबर के डायल कयो, पाने करीब जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो आई बुधायो जनाब त किथे किथे नथो मिले प्रोडक्ट ताकि असा अवेलेबल कराए सको, असा जलाए भी आसानी थी वने, तवा जलाए भी आसानी थी वने, तवा इस्तेमाल कयो ही सब प्रोडक्ट जे के तवा जे आसानी जलाए, तवा जे खूबसूरती जलाए, तवा के बुधाया वने पया।

अच्छा वैसे ही प्रिया जी तारीफ आ या प्रिया ते टोक करी दियो किथे गए थे असा के गाल थोड़ी समझ में नहीं दिया तो ये असा जी तारीफ थे पई या असा दे टोक कई वने पई ये थिंदो वा कई मर्तबा

ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो पियो न असां गॾो गॾु जी जी हाणे लॻो वाक़ई तारीफ़ पियो करे अच्छा ही गानो कंहिंखे डेडी कहिड़ा ॿुधायो त सही लुबना हमारे साथ माजूद कहे थी अस्सलाम वालेकुम शुरू जाने के हाले में भी आपके साथ साथ हूँ तमाम बेहतरीन शो चल रहा है आपका सलाम टू माई फ्रेंड निदली एंड क्यूट गर्ल्स ओके ओके जी हमारी प्यारी लुबी को

अच्छा लगते है कि मैं क्रीम लगाऊंगा तो मैं गोरा तो हो जाऊंगा ना, थोड़ा बुधा तो जी बिल्कुल बिल्कुल चले तुम्हारा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना बेशक तुम्हारा गोरा थी वेला आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारा बिल्कुल मेरा पर मां पूछा करायो मिले थी तो वठी जो सही उनका अलावा ये मौजूद है हाय आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान सुनो दुनिया वालों दिल बड़ा करके सुनो जब जिंदगी में खुश रहना है तो मुनाफिकों से बचते रहना बाबा रे बाबा हाजिर हाजिर और वफा अब्दुल गफार खास के लिए हमारे साथ है एंड नईम अहमद खास के लिए वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान आप कैसी है मुझे सॉन्ग सुनाए शायद अली बबर का कोई भी हाजिर हाजिर शायद बबर जो गाना लिस्ट पे मौजूद है तो लाजमी बदलना और मकसूद मला कहते हैं मेहरापुर से आज ये प्रोडक्ट लेने जाऊंगा और अगर मेरे घर वालों को ये प्रोडक्ट अच्छे ना लगे तो मेरी पिटाई पक्की है नहीं नहीं उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी तारीफ करेंगे बस तव वठी वनो तो सिंगर वो तामुखे दुआ उड़ीदा और ये है जी सिद्रा सकलीन अब्बास हमारे साथ हैं कैसी हैं आप उम्मीद है कि अच्छी होंगी जी सफा अच्छी थी पैया है और कहते अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच अच्छा एक गाल आए ना मानो कुछ मुंह बुधा तो जी चंदा असो सियारे में जो रंग सही थी वेंदो है सियारे में असा गोरा थी चिट्टा थी पर मुझे रुबतो तो मारे गर्मी में चिट्टी दी वी है याद है कमाल आ बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो याद है वाइट एश लवली क्रीम जो कमाल हूं तो भी लगा है तुम भी सोना सोना थी वो

मेरे कश्यप भी हमारे साथ माधुरी वाले कुमार कहते सिड्डो जानी क्या हाल है, गुड आफ्टरनून, वेलकम दिल से, आपको भी वेलकम कहते प्यारी। और ये अनीता हमारे साथ है और सकलीन अबासी भी हमारे साथ है, या फिर सकलीन अबास ने खाली हो कहती और आपको वेलकम कहते हैं, बाकी आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आया। और कश्यप कहती है सिड्डो एडवांस ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, और सॉन्ग सुनाना ईद मुबारक यो ईद ते बुदना सी बाबा, और उनके अलावा एडवांस वाली तवाजी ईद मुबारक खड़ी चली, बाकी गाना आई गाल तब सिद्धि वोट मोहम्मद अयब थे बुक हाबीबुला थे बुक कहते तवान जो शो वेरी नाइस आहे सलाम हैप्पी।

हाल करे पर रिजल्ट वीआईपी मिलियो आए वाह साईं वाह ई असली बुधाईंदा कयो और मोहब्बतूं प्यारे भाजू और हे जी इरम केदी से जानी जवाब है शादी से पहले मैं बहुत बड़े बड़े बहाने बनाती थी नखरे करती थी अब शादी के बाद मेरी सारे बहाने नखरे खत्म हो गए चले ये भी अच्छी बात है और प्रिंस अहमद अली रिंद है फ्रॉम अहमदाबाद से अच्छा भाई आपको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारा शो सुन रहे हैं

मैंने वही सोचा कि मैं जरा अपनी बात को एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। और यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हमारा, आप ये नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03 1579 0595। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स से तैयार शुदा है, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन के साथ साथ आप इस्तेमाल कीजिए, 2 रातों में आपको मिलेगा परफेक्ट वाला हुसन।

वैसे सही बात है, कहने से बेहतर है कि इंसान खामोश ही रहे। ओके जी, आपके मैसेजेस हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि भाई हमारी जानब आए, और अनवर भाई हमें सुन रहे हैं बहुत मोहब्बतों के साथ, हमारा शो पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपको वेलकम है। और एहसन कहते हैं कि टॉपिक बहानो नायों कदा कम करे जान चढ़ाई दायों। चले ये भी अच्छी बात है। नूरसन सुनियो भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना दूर से हमारा शो सुन रहे हैं। चाचा खालिद कहते ईद का पोए नंबर ते राबतो कंदा सी, फिलहाल ईद का पोए नंबर ते राबतो कंदा ई छो नंबर ते राबतो हाणी कयो प्रोडक्ट भी हाणी वठो इने चोंदी माई दखा पोना बाबा हाणी वठो हाणी। और ये मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान, केड़ा हाल है, अमाजा खुश आयो अदी, अमाजा प्रोग्राम वडी शौक सा बुधू पया अदी अलाई शो अमहा जो चैनल मुझे एफएम रेडियो ते हले न पयो, मां डाडो कोशिश कया पयो सकरन एफएम ता शो बुधंदो आया अदी वो मुलाकाते तन्हाई में हलचल मचाती अच्छा भा बिल्कुल तुम कोशिश कर एफएम ते भी हली वो असो चैनल उन अलावा अगर नो हल तो असंख सोशल मीडिया से बुधी सो फेसबुक है असो गूगल से बुधी सो बहुत सारा तरीकेकार बुधने लाइ बस दिल वही कर। और ये भाई हमारे साथ हैं, नाम है आपका सजादुल्ला जमाली, अली हैदर जमाली, अलीगुल जमाली, विलेज रईस, मोहम्मद हसन जमाली, शफियाबाद नवाबशाह से हैं जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते सब भाइयों को।

वेरी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना. कभी मैं सोच रही हूँ कि एक ऐसा पूरा प्रोग्राम करूँ जिसमें ये सारे ओल्डी गोल्डी गाने सुनाऊँ आप लोगों को, और आप लोगों के में से किसी की फरमाइश ना हो, लेकिन हाँ उन लोगों की फरमाइश चलेगी जो कि मतलब ओल्डी गोल्डी गाने की फरमाइश करेंगे. ये बहुत ही प्यारा सा गाना हम लिस्ट में लगा चुके हैं. और सासद विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो हैं. रऊफ मक्सी का गाना सुनाएं. जी बिल्कुल, आपको कल सुनाएंगे रऊफ मक्सी का गाना. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं.

अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सिदरा मैं आज फिर जाऊंगी मीरपुर खास, अगर क्रीम मिली तो लेकर आऊंगी शो के बाद, शो सुन लूं पहले। ठीक है ठीक है, और फिर मुझे बताइएगा ठीक है कि मिला प्रोडक्ट या नहीं मिला। ऐसे कहते हैं असा कुछ डी मोकल खपे इधर खा वापस इंदासी मोटी। चलो ठीक है, बक्तली सियाल हमारे साथ मौजूद है। हेलो अच्छा आरजी भला चमड़ो।

0: के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
3: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बे का सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश, गुर्दे की पथरी, सोज, पुरानी खंघ, जुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया वो है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे तक, बरोज जुम्मो 12 वगे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। अधिक मशवरे और राबते के लिए 0327-99-84-763।
4: कमी गर्मी की शदीद लहर जारी है जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाव वठो। बारन, बुजुर्गन आई बीमार मानुन जो खास ख्याल रखो। दीह जो तमाम गरम वक्त सुबह 11 का शाम 4 वगे तई उस खां पासो करियो। गर्मी खां बचाओ तवां जे एहतियात में आहे। पांजे आई पांजे प्यारन जी हिफाजत करियो आई बेन के भी जान दियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO आई स्टार नेटवर्क जे तावन सा अवाम जे आगाही जे लाए पेश कयो वयो।

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye, skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile, chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں. ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
5: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी है, जेका सेहत लाए खतरनाक थी सके थी। मेहरबानी करे एहतियाती उपाय वठो। बिना जरूरत जे घर खां बाहर न निकरो। बाहर निकरण वक्त कंध ऐं जिस्म खे ढकियो। घणो पाणी वापराइण जी आदत ठाहियो। ORS या निमकोल इस्तेमाल करियो। हल्का, ढिलो ऐं हल्के रंगन वारो लिबास पाइण खे तरजीह ॾियो। ही पैगाम मुस्लिम हैंड्स, NDO ऐं स्टार नेटवर्क जे तआवुन सां अवाम जे आगाही लाइ पेश कयो वियो।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: ॾाढो सुठो
6: GAFM 88 नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल छुप छुप के फर्स्ट रमजान से रोजाना रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ईरान ऐं अमरीका में सरचाव लाइ पाकिस्तान जूं टाकड़ी वारी कोशिशूं तेज़। तेहरान में मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जी ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिफाफ ऐं परे वज़ीर अब्बास राक्षी सां मुलाक़ातूं। जंग जे ख़ात्मे लाइ तजवीज़नि तफ़सीली ॻाल्हियूं। ईरानी मीडिया मूजिब मुलाक़ातनि दौरान ख़िते जी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। जंग जे ख़ात्मे वारनि तजवीज़नि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी। मुलाक़ातनि दौरान वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी बि मौजूदु हो। क़तरी वफ़द बि तेहरान में मौजूदु। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर तेहरान जो दौरो मुकमल करण बाद चीन रवानो थींदो।
1: The primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously other countries have interests, because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
0: मार्शल आसिफ मुनीर सां लगातार राब्ते में आयूं। उमीद आहे त ईरान सां जल्द मुआदो तय थी वेंदो। अमरीका जे परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो स्वीडन में सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त तेहरान सां मुआदो न थियो त प्लान बी बि मौजूदु आहे। मुआदो थियो त अपना हुर्मुस खुली वेंदो। ईरान सां डील असांजी पहिरीं तरजीह आहे। ईरान अमरीका जे मुतालबनि खे अमन ॻाल्हियुनि में सभ खां वधीक रंडक करार ॾेई छॾियो। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी जो गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल सां फोन ते राब्तो। अब्बास राक्षी चयो त अमरीका माज़ी में अधूरनि वाइदनि ऐं फ़ौजी हमलनि ज़रिए सिफ़ातकारी खे नुक़सान पहुचाईंदो रहियो आहे। तेहरान पाकिस्तान जी सालिसी में अमन ॻाल्हियुनि में संजीदगी सां हिसो वठी रहियो आहे। अंटोनियो गुतरेस सिफ़ारती अमल जारी रखण ते ज़ोर भरियो। कतरी वज़ीर आज़म जो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी सां फोन ते राब्तो। अमरीका ईरान में जारी ॻाल्हियुनि में थींदड़ अघ भराई ते ॻाल्हियूं। कतरी वज़ीर आज़म अब्बास राक्षी ते मसइले जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढण ते ज़ोर भरियो। अब्बास राक्षी सूरतहाल ते ओमान जे हमन सब सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। सिफ़ारती कोशिशुनि ते ग़ौर कयो वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ 4 ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुची वियो। एयरपोर्ट पहुचण ते वज़ीर आज़म जो चीनी इख़्तियारनि आदर भाव कयो। वज़ीर आज़म चीनी सदर, वज़ीर आज़म ऐं ॿियनि सां मुलाक़ातूं कंदो। पाक चीन लाॻापनि समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। अमरीका जे नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तल्सी गेबार्ड उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो। फेबरवरी 2025 में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तौरु मुक़ररु थियल तुलसी गेबार्ड 30 जून 2026 ते उहिदो छॾींदी। अमरीकी मीडिया मूजिब तुलसी गेबार्ड ईरान जंग बाबति ट्रंप इंतज़ामिया खां अलॻि मौक़िफ़ रखंदी हुई। औरतुनि में पिंक स्कूटीज़ विराई रहिया आहियूं। औरतुनि खे तरबियत लाइसेंस ऐं मुफ़्त में स्कूटी ॾेई रहिया आहियूं। हैदराबाद में औरतुनि खे पिंक स्कूटीज़ ॾियण वारी तकरीब खे ख़िताब कंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो त सिंध हुकूमत वॾा मनसूबा ॾिना आहिनि, सूबे ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ कमु जारी रखंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम अहमद हैदराबाद में 200 औरतुनि में मुफ़्त पिंक स्कूटीज़ बि विरायूं। केपी बनू वारे इलाइक़े में पुलिस ऐं सीटीटी जो ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। 10 किलो वस्ती देसी साख़्ता बम नाकारा बणायो वियो। पुलिस मूजिब गुझे इतलाउ ते सीटीटी सां गॾु ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन दौरान हिकु पुलिस अहलकार शहीद ऐं हिकु ज़ख़्मी थियो। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादिर बख्शी सईद वेमण जे अगवा में कराची वासी अमाद जे मुलविस हुअण ते शक ज़ाहिर करे छॾियो। डॉक्टर कादिर बख्शी KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सईद वेमण जी बाज़ियाबी लाइ कोशिशूं वठण जी बुनियादी ज़िमेवारी सिंध हुकूमत जी आहे। सईद वेमण जो 2 महीना पहिरें दिलि जो बाईपास थियो आहे। संदसि ज़िंदगी खे ख़तरो आहे। सईद वेमण खे कुझु ॾींहं पहिरियां मुबैना तौरु बलोचिस्तान मां अगवा कयो वियो हो। खैरपुर वेझो ॻोठाणे जो अंबनि जे बाग़ मां गलो कपियल लाश हथ। इतलाउ ते पुलिस पहुची लाश अस्पताल

0: हणंदो आहे. मूंखे आइंस्टाइन जी हिकिड़ी मशहूरु कोटेशन यादि अची वई त शागिर्दनि पुछे, साईं तव्हां वटि त समुंड हूंदो इल्म जो, त पोइ आइंस्टाइन जॾहिं समुंड जे किनारे ते बीठो त समुंड जे किनारे तां कुझु पथरियूं हथ में खणी करे चई त ॾिसो था जेतिरियूं पथरियूं हथ में हुयमि, जेतिरियूं मूंखे पथरियूं हथ में आहिनि, सो दिस इज़ अ नॉलेज दैट आई हैव, दिस इज़ अ होल ओशियन इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. सो असां वटि बि जेतिरो इल्मु आहे, जेतिरो असां पढ़ियो आहे हिन वक़्त ताईं पंहिंजी हिन प्रैक्टिस में, कोशिशि कंदा आहियूं ओतिरो इम्पार्ट कयूं. ऐं ॿियो मां मौला जो हमेशह हिकिड़ो फ़रमान ॿुधाईंदो आहियां त इल्मु तव्हां वटि ॿिए जी अमानत
1: आहे.
0: सो जेको असां वटि आहे असां उनजे हिसाब सां कोशिशि कंदा आहियूं जेतिरो सुठो खां सुठो पंहिंजे ऑडियंस खे, पंहिंजे ॿुधण वारनि खे, ॾिसण वारनि खे इम्पार्ट कयूं, ऐं जेतिरा थी सघनि हुनजा पॉसिबल सोल्यूशन्स उन्हनि खे कढी ॾियूं ऐं सुठी एडवाइस ॾियूं उन्हनि खे.
1: बिल्कुलु ईअं आहे शहबाज़ साहिब, ऐं तव्हांजी जेका इहे पथरनि वारी तव्हां मिसाल ॾिनी, इहा जेकी नॉलेज असांजा जेके ऑडियंस आहिनि उहे तव्हांजी नॉलेज जा तमामु घणा मुंतज़िर हूंदा
0: आहिनि.
1: इवन मूं ॾे व्हाट्सएप ते मैसेजिस ईंदा आहिनि त इहो प्रोग्राम जेको आहे त असांखे रिकॉर्डिंग मोकिली
0: वञे, त
1: मां उन्हनि खे चवंदो आहियां अगरि तव्हां खां अची असल में उनजा जेके फीडबैक शामिल थींदा आहिनि उहे ॿुधण चाहींदा हूंदा आहिनि, पोइ उन्हनि खे मूं इहो चयो आहे त फेसबुक ते असांजो प्रोग्राम पियो हूंदो आहे, एज़ वेल एज़ यूट्यूब ते बि पियो हूंदो आहे, ऐं हू इहो बि फीडबैक ॾियनि पिया त असां बार बार ॿुधंदा आहियूं शहबाज़ साहिब जो ॻाल्हाइण असांखे ॾाढो
0: वणंदो आहे. लॻो त इन फ्यूचर वी विल बी डूइंग दिस शो इन उर्दू. असांखे सिर्फ़ु अगरि हिकिड़ी असांजी सिंधी कम्युनिटी आहे त असांखे हिकिड़ो हिकिड़ो पर्टिकुलर सेक्शन बि असांखे कवर करिणो आहे, पर इन फ्यूचर वी विल बी कवरिंग इनशाला इन उर्दू ऐं सिंधी. असां हिन ॿिन्हिनि खे कैरी ऑन कंदासीं, पर हुनखे वर्कआउट कंदासीं, वर्कआउट खां पोइ इनशाला अगरि जेको प्रोग्राम बीठो त पोइ हिनखे असां कन्वर्ट करे छॾंदासीं प्रोग्राम खे.
1: बिल्कुलु. अच्छा शहबाज़ साहिब, टॉपिक जी तरफ़ अचूं पिया, सिंध रेंट प्रिमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड. इन तरफ़ अचण खां पहिरियां अहां सभ खां पहिरियां ॿुधायो त पर्पज़ छा आहे हिन जो, ही ऑर्डिनेंस जेको आहे त पाकिस्तान में जेको आयो हिन जो पर्पज़ छा हो?
0: बाबर, बिफोर दिस ऑर्डिनेंस 1979 सिंध ऑर्डिनेंस खां पहिरियों सिंध रेस्ट्रिक्शन, अर्बन रेस्ट्रिक्शन एरी प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस हूंदो हुयो. उन ऑर्डिनेंस में छा हुयो त ऑल ऑफ सडन जेको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थियो ऐं रेंट पंहिंजी मर्ज़ी ते वरिता वेंदा हुया, हर प्रेमिसिस जा अलॻि अलॻि रेंट हूंदा हुया, ऐं कुझु प्रोविंसिस में माण्हुनि खे रहण जी जॻह मिलंदी, कुझिनि खे न मिलंदी, हर एरिया जा हिकिड़ा अलॻि अलॻि रेंट्स जेको आहे न तय थी विया. पोइ हिकिड़ो पर्टिकुलर माना हिकिड़ो अहिड़ो क्राइटेरिया न हुयो जिते माण्हू को रेंट फिक्स करे सघे, जंहिंमें टेनेंट खे बि बेनिफिट मिली सघे ऐं लैंडलॉर्ड खे बि, लैंडलॉर्ड खे बि जेको आहे न उन मां बेनिफिट मिली सघे. सो सिंध रेंट प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस या असां जंहिंखे चऊं रेंट प्रेमिसिस ऑर्डिनेंस जो मेन सोल पर्पज़ इहो ई हो कि टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट, कि उन्हनि जे विच में हिकिड़ो अहिड़ो बैलेंस क्रिएट कयूं कि एज़ पर एग्रीमेंट न उहे हिक ॿिए खे इलीगल एविक्शन करे सघनि, न हिक ॿिए जे मथां केसिस करे सघनि, न उन्हनि जी बेसिक नेसेसिटीज़ कोई बंदि करे सघे, ऐं प्लस में हिकिड़ो स्मूथ ऐं फ्रेंडली जेको एग्रीमेंट हूंदो आहे ॿिन्हिनि जो, जेके सां पीसफुल पोज़ीशन ऐं पीसफुल एविक्शन जेकी थींदी आहे ॿिन्हिनि जी उहो बि कैरी ऑन थी सघे. सो द पर्पज़ ऑफ होल पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वॉज टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड.
1: अच्छा, अंडर दिस ऑर्डिनेंस जेको आहे त टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड रेंट प्रिमिसिस, रेंट कंट्रोलर, इन्हनि जी लीगल डेफिनेशन असांखे.
0: लीगल डेफिनेशन मां ईअं सम्झाईंदुमि, लैंडलॉर्ड इज़ अ पर्सन हू इज़ अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हू वांट्स टू लेट आउट हिज़ प्रॉपर्टी टू समवन, जेके असां चवंदा आहियूं माना वांट टू लेट आउट डिमाइस प्रेमिसिस. हाणे प्रेमिसिस जो छा आहे, प्रेमिसिस माना जॻह, ठीकु आहे. टेनेंट जो मतिलबु आहे पर्सन टू होम द प्रॉपर्टी या टू होम द प्रेमिस या प्रेमिसिस या बिल्डिंग इज़ गिवन ऑन द रेंट, जेके किराए ते मसवाड़ ते जॻह ॾिनी थी वञे उनखे असां टेनेंट चवंदा
1: आहियूं.
0: कंट्रोलर इज़ अ पर्सन जेको फेयर रेंट उन्हनि जे विक्त में थींदड़ इख़्तिलाफ़, उन्हनि जे विक्त में विच में थींदड़ जेके बि मामलात हूंदा, जेके बि लीगल इशूज़ आहिनि, उन्हनि खे हैंडल करे, उन्हनि खे सॉर्ट आउट करे, ऐं इट इज़ अ ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशनल गवर्नमेंट. कोई बि सीनियर सिविल जज या कोई बि अहिड़ो सिविल जज जंहिंजी एग्ज़ैक्ट 3 ईयर्स जी जेका न प्रैक्टिस हुजे या उनजी सर्विस हुजे जुडिशरी में, उहो अपॉइंट थींदो आहे बाय सिंध गवर्नमेंट.
1: ऑलराइट. अच्छा शिबा साहब, ही त असां टेनेंट ऐं लैंडलॉर्ड सम्झी वियासीं, रेंट बि सम्झी वियासीं, रेंट कंट्रोलर ते असां अञा ईंदासीं, हिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ॾिसंदासीं, रोल ॾिसंदासीं हिन जो छा आहे. उन खां पहिरियां असां इन ते ॻाल्हाइण चाहींदासीं त वर्बल रेंट एग्रीमेंट ऐं लीगली, अच्छा वर्बल रेंट एग्रीमेंट हिकिड़ो थींदो आहे त बाबा ठीकु आहे पहिरीं खां जेको आहे त किरायो वठिजां, ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ो वरी रिटन में थींदो आहे. वर्बल जेको रेंट एग्रीमेंट आहे उनजी लीगली केतिरी इंपॉर्टेंस आहे?
0: वर्बल बि क़ाबिल क़बूल आहे बाबा, वर्बल बि जी बि सेम अहमियत आहे जेतिरी रिटन जी अहमियत आहे, प्रोवाइडेड दैट के कॉम्पिटेंट जे हुन में विटनेस अवेलेबल हुजनि, कॉम्पिटेंट विटनेस
1: वर्बल में,
0: वर्बल में बि कॉम्पिटेंट विटनेस हुजनि ज़रूरु. अगरि कॉम्पिटेंट विटनेसिस बि आहिनि ऐं किरायेदार ऐं मकान मालिक जे विच में अगरि को रेंट ते पाए थिए थो पियो या कोई बि हुन जे विच में हिकिड़ो एग्रीमेंट थिए थो जेके असां टेनेंसी एग्रीमेंट चवंदा आहियूं, अगरि को हुनखे प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड पंहिंजी प्रॉपर्टी मकान मालिक प्रॉपर्टी आहे शॉप आहे कुझु बि अगरि ॾियणु चाहे थो पियो त हिकिड़ो रेंट एस पर लोकलिटी जे हिसाब सां जेको लोकलिटी में रेंट हले थो उहो ई हुनखे जेको आहे उन ई रेंट ते उनखे मसुवाड़ ते उहा जॻह ॾियणी पवंदी.
1: मतिलबु वर्बली तव्हां सम्झो पिया त जेको रेंट एग्रीमेंट इहो आहे, हिन में तव्हांजे साम्हूं अहिड़ा केसिस न आया आहिनि त हिन में मतिलबु वर्बली त ठीकु आहे माण्हू ॻाल्हाए छॾंदो आहे, पोइ हिन में कुझु कंफ्यूजन न हूंदी आहे तव्हां एतिरा न चया हुया एतिरा पैसा चया हुया.
0: बसि दिस बिग डिफरेंस रिटन में छा आहे त रिटन में अगरि वंस अ कॉन्ट्रेक्ट इज़ रिटन हुन में तव्हां टर्म्स एंड कंडीशन कैटागोरिकली तव्हां लिखी छॾियूं आहिनि, स्पेसिफिकली तव्हां मैंशन थियल आहिनि, हुन में डेट बि मैंशन थियल आहे त हिन सां महीने खां वठी करे मंथ जे आख़िरी महीने ताईं दे विल बी अवेलेबल हेयर. उन खां पोइ अगरि हे चाहिनि त असां सां गॾु नोवेशन करे सघंदा आहिनि, नोवेशन जो मतिलबु आहे टू मेक अ न्यू कॉन्ट्रेक्ट, की असां सां न्यू कॉन्ट्रेक्ट या न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट असां सां कैरी ऑन करे सघनि था. हाणे उन में छा थींदो आहे त उन में जेके असां टसल चवजे प्रॉब्लम्स चवजे इशूज़ चवजे उन में लिटिगेशन थियण जा चांसिस तमामु घटि थी वेंदा आहिनि. वर्बल में लिटिगेशन थियण जा चांसिस वधी वेंदा
1: आहिनि.
0: सपोज़ हाणे लैंडलॉर्ड हिकिड़ो किरायो चए थो मां हिन पर्टिकुलर जॻह जो किरायो तव्हां खां 15,000 वठंदुमि, हाणे हुन ते एडवांस बि 50,000 एडवांस बि ॾेई छॾियो. जॾहिं किरायेदार शिफ्ट थियो, शिफ्ट थियण खां पोइ चयो साईं मां तव्हांखे चयुमि 20,000, हाणे हुन चयो साईं तव्हां 20,000 चयो ई न हुयो, तव्हां त मूंखे 10,000-15,000 चयो हुयो. हाणे इते थियो कॉन्फ्लिक्ट. सो हिन कॉन्फ्लिक्ट खां बचण लाइ सभिनि खां बहितर इहो आहे त वर्बल जी पंहिंजी अलॻि हैसियत आहे, बहितर आहे माण्हू एग्रीमेंट कराए वठे उहो बि रिटन फॉर्म में, प्लस में हिनखे रजिस्टर बि कराए छॾे ऐं हिकिड़ी कॉपी कंसर्न हद जे रेंट कंट्रोलर वटि बि प्रोवाइड करे छॾे त हे जॻह मसुवाड़ ते वई आहे.
1: ऑलराइट, अच्छा हाणे असां रेंट कंट्रोलर जी तरफ़ अचूं था. रेंट कंट्रोलर जो रोल छा आहे ऐं कहिड़ी सूरत में जेको आहे त रेंट कंट्रोलर जेको आहे त कहिड़ा केसिस हैंडल करे सघे थो?
0: रेंट कंट्रोलर ईअं चओ त असां ईअं चओ जीअं मां ईअं सम्झायां तव्हांखे की रेंट कंट्रोल इज़ अ जज, उहो हिकिड़ो सिविल जज आहे जेके हिकिड़ा विद इन रेंट ऑर्डिनेंस में हिकिड़ा पावर ॾींदा आहिनि त तव्हां रेंट मैटर सां जेतिरा बि रिलेटेड इशूज़ आहिनि उनखे तव्हां टेकल डाउन कयो. सो रेंट कंट्रोल इज़ बेसिकली एज़ अ जज दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रोवेंशनल गवर्नमेंट, सीनियर सिविल जज हुजे जीअं मां तव्हांखे ॿुधायमि, उहो सिविल जज जंहिंजी एटलीस्ट जॉब में जेकी आहे न एक्सपीरियंस 3 सालनि जो हुजे. हाणे इन जो मेन पर्पस छा आहे? रेंट कंट्रोलर जो मेन पर्पस इहो आहे सभ खां पहिरियों फेयर रेंट डिसाइड करे, कंहिं बि प्रेमिसिस में फेयर रेंट आहे, कंहिं बि लोकलिटी में अगरि रेंट हद खां वधीक न हुजे. मां मिसाल वेठा तव्हांजी हिन बिल्डिंग जो जंहिं बिल्डिंग में असां अवेलेबल आहियूं. हाणे हिन बिल्डिंग में सभु घर हिकु जहिड़ा आहिनि, हिन बिल्डिंग में सॼी जॻहियूं हिकु जहिड़ियूं आहिनि, ठीकु आहे. अगरि सपोज़ तव्हांजे हिन फ्लोर जो अगरि कोई किरायो तव्हां खां 25,000 वठे ऐं साम्हूं वारे फ्लेयर जो किरायो जेको फ्लोर जो किरायो आहे या घर जॻह जो किरायो उहो 30,000 वठे, हाणे हिते डिफरेंस अची वियो, इहो फेयर रेंट न थियो. अगरि इन सिलसिले में चाहे त चाहियो त अगरि उन जेका 30,000 किरायो वरितो थो वञे उहो रेंट कंट्रोलर ॾे एप्लीकेशन ॾेई करे उहो किरायो उन खां 25,000 ते वापसि खणाए सघे थो. छो त सर विद इन प्रेमिसिस में सॼी बिल्डिंग में जॾहिं किरायो 25,000 आहे त मूंखां 30,000 छो थो वरितो वञे?
1: जॾहिं रेंट एग्रीमेंट थिए पियो टेनेंट एंड हुनजे लैंडलॉर्ड जे विच में, त छा हुन एग्रीमेंट महिल बि रेंट कंट्रोलर ॾे वञणु घुरिजे या जस्ट तव्हां एग्रीमेंट कयो अगरि हुनजी को ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे पियो अगेंस्ट वञे पियो त पोइ रेंट कंट्रोलर ॾे वञणु?
0: मां जीअं चयुमि हाणे तव्हांखे ॿुधायमि त रेंट एग्रीमेंट अगरि तयार थिए थो, रेंट एग्रीमेंट सभ खां पहिरियों तव्हां मेकआउट कयो, रेंट एग्रीमेंट खे रजिस्टर्ड करायो, रजिस्टर करण खां पोइ हिकिड़ी कॉपी तव्हां रेंट कंट्रोलर वटि बि बि जमा करायो रेंट कंट्रोलर उन ई हद जो जुरिसडिक्शन जो जंहिंमें इमूवेबल जेके प्रेमिस चवंदा आहिनि उहा प्रॉपर्टी अवेलेबल हुजे उन सां छा थींदो त अगरि इन फ्यूचर अगरि को केस वग़ैरह थिए थो त उहा कॉपी हुननि वटि ऑलरेडी पई हूंदी जंहिंसां एज अ रेंट कंट्रोलर जी हैसियत में असां तव्हांखे इहा कॉपी प्रोवाइड कयूं था इन फ्यूचर कॾहिं अगरि अहिड़ो को मामिलो लिटिगेशन जो अची वञे त तव्हांखे ऑलरेडी ख़बर हुजे त इहो मामिलो असां ॿिनि पार्टीज़ जे विच में आहे
1: ऑल राइट अच्छा इहो जेको आहे त डिस्प्यूट अगरि थिए पियो हिन विच में त रेंट कंट्रोलर खां अलावा सिविल कोर्ट बि माण्हू वञी सघे थो या रेंट कंट्रोलर
0: इहे अथॉरिटी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहे एक्सक्लूसिव पावर रेंट कंट्रोलर खे ई आहिनि जेतिरा बि रेंट सां इशूज़ हूंदा आहिनि रेंट कंट्रोलर हलाईंदो या त समरी बेसिस ते असां हिनखे समरी बेसिस चवंदो या समरी बेसिस ते केस हलाईंदो या फुल फ्लेज बेसिस ते केस हलाईंदो समरी बेसिस ते हूंदो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम केस खे डिसाइड करणो हूंदो आहे कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंमें एविडेंस ऐं प्लस में डिटेल्ड जंहिंमें क्रॉस एग्ज़ामिनेशन थींदी WS रिटन स्टेटमेंट बि अची वेंदी शू फ्रेम बि थींदा उनखां पोइ एट डिटेल एविडेंस बि हलंदी शाहिद बि ईंदा उहो फुल लेंथ बि केस हली सघे थो ऐं समरी बेसिस ते बि केस हली सघे थो
1: ऑल राइट अच्छा हाणे तव्हां इहा थोरी मिसाल ॾिनी फ्लोर वारी 25 ऐं 30,000 वारी इन तरह मुंहिंजो ध्यानु हलियो वियो त रेंट फिक्सेशन जेकी आहे त थिए पई इन जो थोरो असांखे ॿुधायो त अंडर दिस ऑर्डिनेंस कीअं करे सघिजे थी ऐं सेकेंडली अगरि को डिस्प्यूट करे पियो को इन जे अगेंस्ट वञे पियो उन जे लाइ कहिड़ो प्रोसेस आहे
0: फेयर रेंट जो पर्पज़ ई सिर्फ़ु इहो ई आहे त कोई बि जॻह आहे कंहिं लोकेलिटी में आहे हाणे हिनखे मिसाल था वठूं तव्हां हॉस्टल्स ॾिठा हूंदा जीअं अगरि तव्हां सखर में असां रहूं था त अगरि तव्हां पंहिंजो IBA जी तरफ़ वेंदो त हिते हॉस्टल्स इलाही आहिनि त हिते जॉइंटली बि छोकिरा रहनि था पिया इंडिविजुअल बि रहनि था पिया हाणे हुते सॼा बंगला ठहियल आहिनि हाणे उहो बंगलनि जे हिसाब सां उनजो हिकिड़ो रेंट फिक्स आहे
1: सही
0: कंहिंजो मिसाल टी अगरि हिकिड़ी प्रेमिस हिकु घिटी आहे हिकिड़ी गली आहे सरकम स्टेसिस ऐं उनजा जेकी रोड आहे रस्ता त साॻा ई आहिनि बिल्डिंगूं बि तक़रीबन ईअं सम्झो हिकु जहिड़ियूं आहिनि हाणे किथे 30,000 रेंट थी वञे किथे 35,000 रेंट थिए किथे 40,000 रेंट थी वञे त उन मां कोई बि टेनेंट वञी करे इहो क्लेम करे सघे थो रेंट कंट्रोलर वटि त लैंडलॉर्ड असां खां ज़्यादा किरायो छो थो वठे जॾहिं त पूरो रेंट पूरी प्रेमिस जो पूरे एरिया जो रेंट 30,000 आहे असां को 40,000 छो था वता वञनि उन में उनजे ख़िलाफ़ु एप्लीकेशन दाख़िल कंदा रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर उनखे छा कंदो बाबंद कंदो त किरायो तव्हां वापसि 25,000 खणी अचो 30,000 ते वापसि खणी अचो छो त ऑलरेडी पूरी प्रेमिसिस में पूरी जी पूरी एरिया में किरायो सिमिलर बेसिस ते हुजे
1: ऑल राइट
0: बिल्कुलु
1: अच्छा ही ऑर्डिनेंस अगरि रेंट ते मूंखे थोरो ध्यानु वरी ॿिए तरफ़ हीउ जेको होटल्स वग़ैरह ते रूम बुक कराईंदा आहिनि उते बि जेको आहे पंहिंजी मनमानी आहे जेके रेट्स वठां छा हीउ ऑर्डिनेंस उन्हनि जे
0: लाइ
1: मतिलबु वठी सघनि
0: वठी सघनि था उनजी हिकिड़ी पंहिंजी यूनियन आहे
1: ऐं हॉस्टल वारा जेके आहिनि त
0: इहो हॉस्टल वारा इन करे अचनि था त छोकिरा रहनि था पिया सालनि जा साल रहनि था मंथली बेसिस ते किरायो ॾियनि था उन्हनि जो एग्रीमेंट ठहे थो असां जॾहिं मिसाल कंहिं हिकिड़े पर्टिकुलर सिटी में वञूं था उते असां उन्हनि सां को मुआदो लिखित में नथा ॾियूं पिया जॻह मिसाल जंहिं जॻह में माण्हू रहनि था पिया जेके हुते अचनि था स्टे करनि था ठीकु आहे उहे उन सां बाउंड न आहिनि पर जंहिंजी प्रॉपर्टी आहे जंहिंजी प्रॉपर्टी आहे उहो बाउंड थी सघे थो पियो त इन पूरे एरिया में जेतिरो बि किरायो हूंदो उहो हिकिड़ो ई हूंदो
1: ठीकु आहे अच्छा प्रोसेस तव्हां जीअं ॿुधायो त अगरि वधीक रेंट वठे पियो त कंट्रोलर रेंट कंट्रोलर ॾे वञणु घुरिजे एप्लीकेशन खणी वञणु घुरिजे केतिरनि ॾींहंनि में इहो प्रोसेस थी वेंदो ऐं केतिरनि ॾींहंनि में हू जेको आहे त हुनखे लैंडलॉर्ड खे पाबंद बणाईंदा त बाबा तव्हां जेको आहे रेंट ओतिरो ई वरितो जेको हले पियो
0: कुझु मां छा चयुमि समरी बेसिस ते कुझु केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि की अगरि उन में अगरि मेलाफाइड शो थी थो वञे के लैंडलॉर्ड इंटेंशनली किरायो वधाए करे ऐं जेको न सभिनि सां बेमानी करे थो ऐं पंहिंजी जॻह जी किरायो वधाए थो जॾहिं त लोकेलिटी में उहो किरायो न आहे अगरि उहो प्रूव थो थी वञे त विद इन 30 ॾींहं बि काफ़ी आहिनि न त विद इन 4-5 महीननि में या 6 महीननि में सॉर्ट आउट करे उहो किराए खे वापसि उन पोज़ीशन ते खणी वेंदो
1: अच्छा हिन सिचुएशन में तव्हां छा रिकमेंड कंदो उन्हनि खे जेके सम्झनि त बाबा ठीकु आहे असां खां रेंट वधीक वरितो वञे पियो हाली फ़िलहाल त जॻह वठूं वधीक रेंट में पोइ असां बाद में वञी करे रेंट कंट्रोल ॾे वञूं या उहो वेट करनि
0: रेंट ते जॻह खपे कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके डिटेल वठंदा आहिनि अगरि सपोज़ के अगरि कंहिं माण्हू खे मसवाड़ ते जगह खपे या कें उनके मसवाड़ ते जगह डारे छी विच में वो पैं रोल प्ले कर मीडिएटर जो रोल प्ले कर अमाउंट वी हलो वो हाँ जैसे तुम शिफ्ट थो बाद में खबर पी तो बाबा मां किरायो इन शे जो सपोज एक सम में तो दें बो मू इन किरा बे सम में तो दे पो तो उन लैंडलॉर्ड के पे नोटिस मोकल दो लैंडलॉर्ड के चवन सही हे जी तीन जगह दिनी है मकान मालिक तुम्हें जगह दिनी है कंपेरेटिवली इन सागे लोकलिटी में एरिया में असा बया माइट भी रहन था वो तो एतो किरा ना भरन तक किरायो एतो छो था वो सपोज अगर मुझा रिलेटिव ब स्टोरी बिल्डिंग में रहन था मां भी ब स्टोरी बिल्डिंग में रहा तो ठीक है लोकलिटी में कोई फर्क ना है तो तुम्हें पर्टिकुलर अमाउंट था वो उन्हें पर्टिकुलर अमाउंट था वो अगर वो इन गाल मे तो ठीक है मां तुम किरायो उत खी इंदम अदरवाइज उ मू उन रेफरेंस वी कर रेंट कंट्रोलर के रेफरेंस कर सही इन लोकलिटी में हे चार पंज घर है जिनको किरायो एतो ही मकान मालिक सागो ही पर मुखा वधिक तो वटे उन्हें का घट तो वटे
1: ओके ओके जी मतलब वो हाली रेंट ते रहन शुरू करे छ रेन विच में उन दौरान
0: एप्लीकेशन दिसो ना खबर न पौंदी
1: करे करे
0: खबर जेरी खबर पे स्क्रूटनी गंदा से खबर पौंदी या असा छा कंदा त तकड़ में रही वेनो रहन सा खा पोई असा के खबर पौंदी जिनको किरायो छा हो
1: अच्छा कदें कदें जो इन यो भी थन्द ऑफर भी दिनी वी है लैंडलॉर्ड के यार इनके नी जा मुख्य दी जा पंज हजार अंदो मैं अनजस्टिस
0: असल में वजह डिपेंड करे तो एरिया टू एरिया हाँ सपोज मैं जो एरिया में रहा तो अनफॉर्चुनेटली
1: जी
0: मुझो तो एरिया पाड़ो तो नबिन के भी प्यारो हों पर अगर मैं ये चव अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से उत लाइट लोडशेडिंग बारह बारह कलाक तेरह तेरह कलाक लोडशेडिंग ट्रांसफार्मर अगर फाटी दो पे तो कोई जहमत नथो करे उते अचण जी ठीक है सो अगर मां उन हिसाब सा अगर चवा त अगर कोई मुखे रेंट ते अगर कोई चे मां हन एरिया में ता रेंट ते रहण तो अचा मां के दिनो 10000 वधिक भरे बी जगह ते हलियो हेड नहीं जे सो डिपेंड करे तो एरिया जे मतलब अगर कोई मानो 10000 5000 वधिक दई करे चे तो मां सुठी एनवायरमेंट में रहा तो उन में को हर्ज ना है अगर अननेसेसरी को रेंट वधाए तो अननेसेसरी है उनन जे लाया अननेसेसरी को रेंट वधाए तो इलीगल तरीके से उन जे मथों यो कानून लागू थी वेंदो
1: बिल्कुल इन में ऑर्डिनेंस में जेको सेक्शन 8 में रेंट इंक्रीज रेगुलेशन भी है
0: एग्जैक्टली
1: इन ते पाण गलहिंदासी पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हलदासी सो लिसनर्स प्रोग्राम जारी है लीगल कॉर्नर में बाबर शेख हमसा गड है मुसा गड एडवोकेट शहबाज हफीज साहब मौजूद हैं आई टॉपिक सा रिलेवेंट तो सवाल होजन या इन का अलावा तमा के का लीगल कंसल्टेशन गुर्जे त लाइव बैठा हैं शहबाज साहब तमा का पूछी सको था फ्री ऑफ कॉस्ट तमा के जका ते लीगल एडवाइस दिंदा जी तक फी न वी वी असों नंबर है 03000113488 सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक डाउन हल्दी असा गट रहो

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام
2: آپ کا پیسہ
5: DMA کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
6: پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، GFM 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागल खाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट।
2: उन्हें कहता चाहिए रेंट फिक्स यो सवाल उन्हें सही रिलेटेड है।
3: ऑल राइट,
2: वंस जे तां वो फिक्स कयो था त देन यू हैव टू वेट फॉर द 3 इयर्स। टिन सालन का पो वनी करे ता रेंट के वधाय सको।
3: अच्छा, 3 सालन का पो रेंट वधी वियो।
2: उन्हें का पो थियो आहे पीरियड 3 साल ही।
3: ओके,
2: वेरी 3 साल।
3: ओके,
2: ये फैसिलिटी यानी कि किस्म जी।
3: ओके,
2: ता फैसिलिटी के टेनेंट के लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जे विच में एकडो बॉन्ड प्लस में हिकड़ी फैसिलिटी के 3 साल अंदर जो किरायो न वधंदो एक्सेप्ट जो 10% असन जो वधंदो उन जे हिसाब सा।
3: ऑलराइट ऑलराइट। सो कुछ फीडबैक जी तरफ हलूं पिया। अब्दुल सत्तार साहब चवन पिया त छा घर मालिक किराए दौरान बिजली गैस या पानी बंद करे सके थो, अड़ी हालत में किराएदार छा करे। साईं बिल्कुल इन ते असा अचूं पिया सेक्शन 11 में बेसिक एमिनिटीज ते बे जको है न जिक्र जाण लाए इन्हें जो सवाल भी आहे त असा चाहिंदासी इन ते तां थोड़ी वज़ाहत कयो।
2: बेसिक एमिनिटीज टेनेंसी एग्रीमेंट जे हिसाब सां बेसिक इन में एमिनिटीज इन के ईअं चवंबो आहे के अगर कोई भी जॻह मसवाड़ ते वञे थी पई ऐं मसवाड़ ते अची वई लैंडलॉर्ड टेनेंट खे ॾेई छॾी किरायेदार खे ॾेई छॾी टे शयूं उन खां हिकिड़ो तव्हां मशहूरु नारो ॿुधियो रोटी कपिड़ो और मकान।
3: यस,
2: मांग रहा यारनि सां। ठीकु आहे, सो जॾहिं टेनेंट जीअं मसवाड़ ते ईंदो आहे त हुनजी बेसिक टे नेसेसिटीज़ आहिनि त लैंडलॉर्ड हुनजो गैस बंदि न करे।
3: ठीकु आहे,
2: लैंडलॉर्ड हुनजो पाणी बंदि न करे।
3: ठीकु आहे,
2: लैंडलॉर्ड हुनजी बिजली बंदि न कराए
3: कंहिं
2: बि सूरत में हुनखे नाहिन कराइणियूं, छो की न त उहो लाज़मी जॻह हूंदी छा जे लाइ जेको असां मसवाड़ किरायो ॾींदाऊं असां दीवारनि जो थोरी ॾींदाऊं, असां किरायो ॾींदाऊं हुन में रहण जे लाइ पाणी जो बि किरायो ॾींदाऊं, असां जेकी बिजली इस्तेमालु थी हुनजो बि किरायो ॾींदाऊं, उन मां जेको गैस हूंदो असां उनजो बि किरायो ॾींदाऊं। सो अगरि कोई बि लैंडलॉर्ड इहे टे शयूं बेसिक एम्यूनिटीज़ बंदि थो करे छॾे त टेनेंट चाहे त रेंट कंट्रोलर ॾे वञी करे इहे बेसिक एम्यूनिटीज़ खे रीस्टोर कराए सघे थो। अगरि बेसिक एम्यूनिटीज़ खे रीस्टोर न कंदो त हुनखे इम्प्रिज़मेंट ऐं फाइन बि थी सघे थी पई।
3: हुनखे
2: ख़बर हुजे त इन में जेल बि अथव, सज़ा लॻी सघे थी ऐं फाइन बि लॻी सघे थो।
3: ठीकु
2: आहे, लैंडलॉर्ड खे इहो हाणे जेके ॿुधण वारा लैंडलॉर्ड आहिनि त उहे कोशिशि
3: करनि
2: त अगरि एग्रीमेंट कयो आहे त एग्रीमेंट में अगरि हुननि सपोज़ जॻह खे वेकेट कराइणो आहे, जॻह खे खाली कराइणो आहे, तव्हां फोर्सफुली जॻह वेकेट नथा कराए सघो, कंहिंजी बेसिक एम्यूनिटीज़ बंदि करे
3: बिल्कुलु बि न।
2: अगरि ड्यूरिंग अगरि तव्हां उहा शइ करे छॾी त विद इन टाइम पीरियड में अगरि रेंट कंट्रोलर वटि अची हली वियो ऐं प्रूव करे वियो त हे असांखे फोर्सफुली इवेक्ट करनि था पिया ऐं एग्रीमेंट खे वायोलेशन करनि था पिया त हुनजो मतिलबु फाइन इम्प्रिज़मेंट लॻी सघे।
3: अच्छा शेवा साहिब, हिन ते हिकिड़ा कुझु मूं बि ॾिठा केसिस अहिड़ा त रेंट न ॾियण जी सूरत में जेको लैंडलॉर्ड आहे उहो तालो ॾेई पियो हले वञे ॿाहिरां ॿ टे ॾींहं, मतिलबु तालो चई रेंट ॾियो कोन पिया, घरां निकिरो कोन पिया त तालो ॾेई हलियो वियो पियो वञे, हिन खे कीअं पिया ॾिसो?
2: इहा फोर्सफुल इवेक्शन आहे न।
3: ओके,
2: तव्हांखे सभ खां पहिरियों हुनखे लीगल नोटिस ॾियणो आहे। ॾिसो, पीसफुल इवेक्शन, फोर्सफुल इवेक्शन,
3: सेक्शन 12 में इवेक्शन ग्राउंड्स आहिनि, इहे इन ते थोरी वज़ाहत।
2: पीसफुल इवेक्शन, फोर्सफुल इवेक्शन, इलीगल इवेक्शन, फ़र्क़ु आहे न ॿिन्हिनि में। पीसफुल इवेक्शन इहा हूंदी आहे वेन यूर कॉन्ट्रेक्ट हैज़ बिन कंप्लीटेड, यूर कॉन्ट्रेक्ट इज़ अबाउट टू बी कंप्लीटेड, तव्हांजो टेनेंसी एग्रीमेंट कंप्लीट थियण वारो आहे। हाणे टेनेंट चाहे त हुनखे कैरी ऑन करे, अगरि टेनेंट चाहे त हुनखे कैरी ऑन करे कॉन्ट्रेक्ट खे अॻिते खणी हली सघे थो। इलीगल छा हूंदो आहे? इलीगल इहे ई हूंदा आहिनि जेके पॉइंट्स, लाइट बंदि करे छॾणु, गैस बंदि करे छॾणु, पाणी बंदि करे छॾणु, ॼाणी वॼी हुनखे तंग करे छॾणु, या तालो भञी करे तालो हणी छॾणु, या सामान कढी करे ॿाहिरि फिटी करे छॾणु, या लैंडलॉर्ड जी टेनेंट जी एब्सेंस में हुनजी फैमिली मेंबर खे तंग करणु, इहो बेसिकली छा इलीगल आहे। फोर्स में छा थींदो आहे? जीअं हाणे फोर्स में सिर्फ़ु हिकिड़ो ई डिफरेंस आहे, जबरन कॉन्ट्रेक्ट जे दौरान, कॉन्ट्रेक्ट जे मिसाल एग्रीमेंट चइजे, एग्रीमेंट जे दौरान कंहिंखे तव्हां कढो, तव्हां हुननि जे ॿारनि खे डिस्टर्ब कयो, तव्हां हुननि जा सामान कढी करे ॿाहिरि फिटी करे छॾियो, तव्हां हुनखे मुसलसल फोनूं करे हरास कयो, थ्रेट कयो, इहो हूंदो आहे फोर्सफुल इवेक्शन।
3: अच्छा, हिन इवेक्शन ते तव्हां जी ॻाल्हि कई फोर्सफुल, हाणे लैंडलॉर्ड खे जेको आहे त रेंट टाइमली मिले कोन थो, उहो कहिड़ो स्टेप वठी सघे थो?
2: लैंडलॉर्ड खे टाइम न, हा ॾिसो न, मां

0: वंस अगेन अचां थो त डिपेंड करे थो त लैंडलॉर्ड जेकी इवेक्शन कराए थो कहिड़े पर्पज़ सां कराए थो, छा हुन जी इवेक्शन कराइण जो पर्पज़ बोनाफाइड आहे पंहिंजे पर्सनल यूज़ लाइ थो कराए पियो, या उहो जेको आहे न जॻह खे जॻह डैमेज थी वई आहे, जॻह में जेको आहे न लीकेज थी वियो आहे, या जॻह जूं दीवारूं कमज़ोर थी वियूं आहिनि, हाणे उहो रिकन्स्ट्रक्शन कराइणु चाहे थो, या हुनजो इंटेंशन ई सिर्फ़ु इहो आहे त हाणे मां हिन किरायेदार मां जान छॾियां, मूंखे ॿियो किरायेदार मिले थो जेको हिन खां सुठो मूंखे किरायो ॾींदो, या मां हुनखे रीलेट कयां. सो डिपेंड करे थो त कहिड़े पॉइंट ऑफ व्यू सां जॻह खाली कराए थो.
1: ओके, अच्छा टाइम सफ़ा मुख़्तसिर आहे पाण वटि, हिकिड़ो इम्पोर्टेंट सवाल आयो आहे.
0: जी जी,
1: बासिर सूमरो साहब चवनि पिया त घर में कंहिं हादसे या नुक़सान जी सूरत में ज़िमेवारी कंहिं ते हूंदी, घर मालिक ते या किरायेदार ते? अक्सर ॾिठो आहे तव्हां छत जा छापड़ जेके अंदरि किरण शुरू थी वेंदा आहिनि या का बि अहिड़ी एक्टिविटी थिए जंहिंसां नुक़सान थिए, त ज़िमेवारी कंहिंजी आई आहे?
0: इहो बाबर वन सेकेंड डिपेंड करे थो त कहिड़ी सिचुएशन में थिया.
1: ओके,
0: छा उहो रिपेयर फोर्सफुल आहे, छा रिपेयर इंटेंशनल आहे? अगरि उहो डैमेज इंटेंशनल आहे त उहो टेनेंट ई हुनजो ज़िमेदार आहे.
1: ओके,
0: अगरि नेचुरल आहे, सपोज़ हाणे जे 2022 में बारिशूं
1: थियूं,
0: हर कंहिंजी जॻहियूं लीक करे वियूं, या दीवारनि में ॾार अची विया, या जे ॾींहुं टेनेंट शिफ्ट थियो हुनजे ॿिए ॾींहुं दीवार किरी पई, ठीकु आहे, त उन टाइम जेको सॼो जी सॼी ज़िमेदारी वञे थी उहा वञे थी लैंडलॉर्ड ते, छोकी नेचुरल आहे, हुनजो हुनमें को हथी न आहे. हाणे हिते टेनेंट आहे पंहिंजी डबल स्टोरी अगरि हुन हिकिड़ो जॻह वरिती आहे प्लस में, हाणे हुन छा कयो, हिकिड़ो फंक्शन रखाए छॾियो, शादी जो फंक्शन, मेहंदी जो फंक्शन सपोज़, या छटीअ जो फंक्शन, हाणे मथे छत जी कैपेसिटी 50 माण्हुनि जी आहे, उते उहो सॼो 100 माण्हुनि जी कैपेसिटी, अचानक छत किरी पए, हाणे उहा गफ़लत कंहिंजी आहे, रिपेयरिंग जी गफ़लत कंहिंजी
1: आहे?
0: सो डिपेंड करे थो त सिचुएशन कहिड़ी आहे, नेचुरल प्रोसेस थियो आहे या इंटेंशनली या नेचुरल प्रोसेस थियो आहे जंहिंजे करे नुक़सान पुॻो आहे जॻह ते.
1: ऐं हीउ सवाल असां करे चुका आहियूं, उन्हनि बि इहो ई पुछियो आहे त छा किरायो वक़्त ते ॾिनो वञे, हिन बावजूद बि ओचितो किरायो वधाए सघिजे थो या न? साईं, 2 minutes ओनली एंड हाउ टू फाइल एप्लीकेशन हिन ते मुतालिक़, रेंट कंट्रोलर,
0: रेंट कंट्रोलर जी एप्लीकेशन असल में हिन सां रिलेटेड इहो आहे त प्रोसीजर इहो आहे त अगरि तव्हांखे कोई बि ग्रीवेंसिस आहे त रिटन फॉर्म में कंहिं बि पंहिंजे काउंसिल जे थ्रू तव्हां रेंट कंट्रोलर खे अप्रोच कयो. अगरि उहो तव्हां सां इवेक्शन सां इशू आहे, तव्हांजो अननेसेसरी उन्हनि किराया वधाए छॾियानि, फोर्सफुल इवेक्शन आहे या इलीगल इवेक्शन आहे, या अगरि हिकिड़ो माण्हू सपोज़ टेनेंट आहे, अगरि उन चयोसीं मूंखां मालिक जॻह वरिती आहे की मां हिन जॻह खे रिपेयर कराईंदुमि, ऐं रिपेयर कराए मां हिन खे जेको आहे न नए तरीक़े सां ठाराए पोइ तव्हांखे वरी मां हिते विहारींदुमि, पर हुन छा कयो, जॻह बि न ठाराई पर मुंहिंजी जॻह ते ॿिए माण्हू खे विहारे छॾियो हिते, ठीकु आहे, उन अगरि अहिड़े क़िस्म जा को केस थियनि था पिया त उन में तव्हां रेंट कंट्रोलर खे अप्रोच कयो. ऐं अगरि तव्हां मेलाफाइड शो करे था वञो टेनेंट जो, हिन जो लैंडलॉर्ड जो, त उन ते रेंट कंट्रोलर हिकिड़ो समरी प्रोसीजर हलाईंदो, जेकॾहिं अगरि एट डिटेल्ड आहे त हुन ते हिकिड़ो फुल ट्रायल हलंदो. सो हिन सिस्टम में त तव्हांजा जेके बि सीनियर सिविल जजिस आहिनि, जेके तव्हांजे ज्यूरिसडिक्शन जा या सिविल जजिस जंहिंजी एटलीस्ट प्रैक्टिस थिए, जंहिंजी जेको जॉब जी एक्सपीरियंस 3 years हुजे, उहे तव्हांजा रेंट कंट्रोलर सां ॾाईंदा आहिनि, हुननि वटि इहो पूरो प्रोसीजर हलंदो ऐं इहे तव्हांजा इशूस खे सॉर्ट आउट करे कोई बि फ़ैसिलो हूंदो, या त तव्हांखे पोज़ीशन वापसि ॾियारींदा, या लैंडलॉर्ड खे बाउंड करे छॾंदा त अननेसेसरी किरायो न वधाए, फोर्सफुल इवेक्शन न कर, या एग्रीमेंट ख़तमु थियण ताईं वेट कर हिननि जो.
1: ऑल राइट, अच्छा शिबा साहब, लास्ट में अवां असांजे लिसनर्स खे, असांजे व्यूअर्स खे कहिड़ो मशवरो ॾींदा जंहिं टॉपिक ते असां अॼु ॻाल्हायोसीं, कहिड़ा एहतियात करणु तोड़े उहे टेनेंट हुजे या लैंडलॉर्ड हुजे?
0: इहो ई मां हिनखे मशवरो ॾींदुमि बाबर, की एग्रीमेंट जे टाइम हर शइ खे सोचे सम्झे ऐं ॾिसी करे तव्हां एग्रीमेंट कयो, की बाद में अचण जे टाइम तव्हांखे ॾुखियाप न थिए.
1: ओके,
0: ठीकु आहे, तव्हां जॻह विज़िट ते वञो था त विज़िट में तव्हां पंहिंजी हर शइ खे, या तव्हां हुनजी वीडियोज़ ठाहे छॾो या पिक्चर्स ठाहे छॾो, ऐं प्लस में तव्हां ॾिसो त हुनमें बेसिक शयूं आहिनि या न आहिनि, बेसिक शयूं हुन में आहिनि या न आहिनि, ठीकु आहे. अगरि हुनमें तव्हांजी गैस जी शइ बि अवेलेबल आहे, पाणी जी बि अगरि अवेलेबल आहे, ऐं इलेक्ट्रिसिटी बि अगरि हुन में, अगरि हुन में काई बि शइ कटियल आहे त उहा मकान मालिक खे चयो असांखे फिक्स करे ॾियो, छत टुटल आहे फिक्स करे ॾियो, दीवार टुटल आहे फिक्स करे ॾियो, त बाद में तकलीफ़ न थिए. रेंट ऑलरेडी ॻाल्हाए छॾो, प्रेमिसिस तव्हां लोकेलिटी में बि मालूम करे छॾो त छा किराया साॻिया आहिनि, किरायो तव्हांखां वधीक त नथो वरितो वञे. ॿियो लैंडलॉर्ड जो करेक्टर ऐं प्लस में लैंडलॉर्ड खे खपे त टेनेंट जो करेक्टर बि ॾिसी वठे कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे जॻह त वठी छॾंदाऊं त बाद में हुनजो पर्पज़ ग़लति इस्तेमालु थींदो
1: आहे
0: इहो सॼो जो सॼो पोइ छा थींदो आहे नुक़सानु थींदो आहे लैंडलॉर्ड खे इज़त हुनजी ख़राबु थींदी आहे त जॻह हिकु शइ जे लाइ वरिती वई ऐं उते कारोबार ॿियो शुरू थी वियो ठीकु आहे या अगरि उहो जेको टेनेंट आहे जेको हुते मसवाड़ ते अची करे वेठो आहे छा उहो प्राइवेट नौसियान सां क्रिएट नथो करे को अहिड़ो गफ़लत वारो कर्म त नथो जेको सोसाइटी जे अगेंस्ट हुजे सो इन्हनि शयुनि खे पंहिंजी नज़र में रखी करे तव्हां पोइ वञी करे तव्हां काई बि जॻह मसवाड़ ते ऐं लैंडलॉर्ड खे बि चवंदुमि हे सिर्फ़ु रेंट प्रेमिसिस सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु टेनेंट जा राइट्स खे प्रोटेक्ट नथो करे इहो साॻा ई राइट्स लैंडलॉर्ड जा बि प्रोटेक्ट करे थो उन्हनि खे बि उन्हनि शयुनि खां बचायो थो पियो त अगरि मिसाल टेनेंट जी तरफ़ां गफ़लत थी वञे त लैंडलॉर्ड जॻह खे कीअं वेट कराए सघे थो अगरि लैंडलॉर्ड खां गफ़लत थी वञे त पंहिंजो टेनेंट राइट कीअं थो वठी सघे दिस ऑर्डिनेंस इज़ फॉर बोथ ॿिन्हिनि जो मां जीअं असां शुरू में डेफिनेशन में पढ़ियोसीं त दिस इज़ क्रिएटिंग द बैलेंस बिटवीन द टू हिकिड़ो एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॿिन्हिनि में हिकिड़ी हार्मोनी क्रिएट करण जे लाइ दिस ऑर्डिनेंस केम इन टू बींग
1: शहबाज़ साहब थैंक यू सो मच
0: वेलकम मां माज़रत कंदुमि त ॿ दफ़ा मां साइलेंट ते फोन रखियो कॉल्स लॻी वियूं उहे बि इम्पोर्टेंट
1: कॉल्स यादि आयो असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि तव्हांखां अगरि लीगल कंसल्टेशन वठणु चाहिनि
0: त
1: उन लाइ नंबर तव्हां असांजे
0: बिल्कुलु 1244306 माना 0308 1244306
1: That's
0: my number.
1: थैंक यू सो मच सो लिसनर्स प्रोग्राम जे वक़्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो अॼु जे प्रोग्राम में असीं टेनेंट ऐं लैंडलॉर्ड जा जेके आहिनि लीगल राइट्स आहिनि उन मुतालिक़ ॼाणियोसीं स्पेशली हिकिड़ी ॻाल्हि मां बिल्कुलु पॉइंट आउट तव्हांखे कराईंदो वञां त बेसिक एम्यूनिटीज़ जेको आहे न लैंडलॉर्ड कंहिं बि सूरत में टेनेंट जूं जेके आहिनि उहो नथो कटे सघे
0: सेकेंडली
1: येस एंड सेकेंडली रेंट जेको आहे न अचानक बिल्कुलु बि नथो वधाए सघे ऐं थर्डली जेको आहे न बग़ैर कंहिं वजह जे जेको आहे त इवेक्ट नथो करे सघे इहो असां इन ऑर्डिनेंस में अॼु ॼाणियोसीं उमीद आहे अव्हांखे बि ख़बर पइजी वई हूंदी ऐं जेकॾहिं इन जी भनकड़ी थिए पई इन जे अगेंस्ट वञे पियो लैंडलॉर्ड त जेको आहे त रेंट कंट्रोलर मौजूदु आहे किथे हूंदा आहिनि साईं जन
0: सर ज्यूरिसडिक्शन जा जेके जजिस सीनियर सिविल जजिस या सिविल जजिस सेशन कोर्ट
1: सेशन
0: कोर्ट ऐं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट फॉर द क्रिमिनल केसेस
1: अच्छा इन जी एप्लीकेशन
0: डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सिविल जजिस
1: एडवोकेट जी ज़रूरत आहे या इन पर्सन
0: काउंसिल जे थ्रू वञी सघे
1: था
0: इन पर्सन भी वञी सघे
1: इन पर्सन भी वञी सघे तो सो उमीद आहे लिसनर्स तव्हां जे लाइ अॼु जो सेशन ॾाढो फ्रूटफुल साबित थियो हूंदो अगले प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान बाबर शेख ऐं असांजे महिमान एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु अलाह हाफ़िज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैरु

0: अमेरिका में सरचाल आए पाकिस्तान जो चाकड़ी वारियों कोशिशों तेज। तेहरान में मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जीरानी, सदर मसूद पेशिकियान, स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीपाफ और परदेही वजीर अब्बास राक्षी से मुलाकातूं। जंग के खात्मे लाए तजवीजों तफसीली गालियों। ईरानी मीडिया मूजिब मुलाकात दौरान खिते की सूरत हाल से ख्याल की डेवट कई वही। जंग के खात्मे वाले तजवीजन से तफसीली गाल बोल थी। मुलाकात दौरान वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी भी मौजूद हो। कतरी वफद भी तेहरान में मौजूद। सिक्योरिटी जरिए मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान जो दौरों मुकम्मल करने बाद चीन रवाना थी।
1: The primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done a, you know, I think an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries, you know, have interests, because especially Gulf countries that are, you know, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir, and we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him.
0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लगातार राबते में आयु। उम्मीद है तो ईरान से जल्द मुहिदो तय थी वो। अमेरिका के परदेही वजीर मार्को रूबियो स्वीडन में साफियन से गाले है तेहरान से मुहिदो न थो तो प्लान बी भी मौजूद है। मुहिदो थो तो अपना हरमोस खुली वो। ईरान से डील असि पहरी तरजीह है। ईरान अमेरिका के मुतालबन के अमन गालियन में सबका वही रंडक करार दई छो। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राक्षी जा गडियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल से फोन ते भी राबतो। अब्बास राक्षी है तो अमेरिका माजी में अधूरन वायदन ए फौजी हमलन जरिए सिफारतकारी के नुकसान पहुंचाई रो है। तेहरान पाकिस्तान के सालसी में अमन गालियन में संजीदगी से हिस्सो वी रो है। ईरान स्पीकर बाकर कालीपाफ है तो जडे अमेरिका जंग शुरू कई तो असा गाल रहा हुआसी। अमेरिका वायदे की भजकड़ी कदे बहरी नाकाबंदी कई। सिफारतकारी में ईरान के जायज हकन में कौमी मुफादन जो तहफुज कंदासी। कतरी वजीर आजम जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास राक्षी से फोन से राबतो। अमरीका ईरान में जारी गालियन में थीद भराई गाल कतरी वजीर आजम अब्बास राक्षी से मसले जो हल गालियन जरिए कढ़ जोर भर। अब्बास राक्षी सूरत हाल से उमान के हमन सब से भी गाल बोल कई। सिफारती कोशिशन से गौर किया वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ चैन डी के दौरे से चीन पहुंची वो। एयरपोर्ट पहुंचने से वजीर आजम जो चीनी इख्तियार आदर भाव किया। वजीर आजम चीनी सदर वजीर आजम ए बेन से मुलाकात कदो। पाक चीन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल वजीर आजम तो चीन से मुख्तलिफ शोबन में सरकार के हथी डेण जहा ख्वाहिशमंद आय। शानदार आभाव करण से जी जांग सूबे की क्यादत चौथो रहो आ। मेरिट के औरतन में पिंक स्कूटीज विरायूं पी वन। औरतन के तरबियत लाइसेंस ए मुफ्त में स्कूटीज दई रहा हूं। हैदराबाद में औरतन के पिंक स्कूटीज दियण वाली तकरीब के खिताब कदे सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद सिंध हुकूमत वड़ा मनसूबा दिना है सूबे ए मुल्क की तरक्की लाए कम जारी रखासी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद हैदराबाद में 200 औरतन में मुफ्त पिंक स्कूटीज भी विरायूं। केपी के बनू वे इलाके में पुलिस ए सीटीडी जो ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारजी वा केतरा ही जख्मी। 10 किलो वजनी देसी साख्ता बम नाकारा बणायो वो। पुलिस मूजिब गुजे इतलाते सीटीडी से गड ऑपरेशन किया वो। ऑपरेशन दौरान एक पुलिस अहलकार शहीद है एक जख्मी थो। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी शहीद पेमेंट के अगवा में कराची वासी उमाद के मुलविस होने जो शक जाहिर कर छो। संदस नालो ईसीएल में दाखिल करने जो मुतालबो। डॉक्टर कादिर मक्सी एटीएन न्यूज से गालंदे शहीद पेमेंट की बाजियाबी लाए कोशिशों वन की बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है। शहीद पेमेंट जो 2 महीना पहरी दिल जो बाईपास थो है। संदस जिंदगी के खतरो है। शहीद पेमेंट के कुछ डी पहरी मुबैना तौर बलोचिस्तान में अगवा किया वो है।

ॻोठाणे खे उताक ते क़तल कंदड़ वॾेरे जे पुट खे पुलिस गिरफ़्तार करण में नाकाम। मक़तूल ॻोठाणे अजमल उर्फ़ नोमान मेमण जे जनाज़े नमाज़ बाद तदफ़ीन। वारिसनि मूजिबि वॾेरे सईद अहमद सरकी जे पुट बिलाल सरकी नशे में नौजवान खे बंगले ते घुराए क़तल कयो। पुलिस बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न करे रही आहे।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरंट ऐं सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: बसी वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदार कंदो अथसि वॾेरो हुते वेठो टे लॻी अथसि हिते रस्ते में साह ॾिनई
1: वॾेरा माण्हू भाषा आहिनि
0: दलाल खान ते कराईंदा
2: भरसां वॾेरे जे पुट हथां क़तल थियल पोरीअ जो केस पुलिस पारां लोड़ण जूं तयारियूं पुलिस पोरीअ ते गोलियूं हलाईंदड़ वॾेरे जे पुट बिलाल सरकी खे गिरफ़्तार न कयो पुलिस वाकिए जी अणधुरी जांच करण बदिरां वॾेरे बिलाल सरकी जी वंगार वहण लॻी पुलिस चौकीदार अजमल जे क़तल खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस वॾेरो बादशाह माण्हू आहे बसि गोली हली वई नौजवान खे टे गोलियूं लॻियूं आहिनि बसि इतफ़ाक़ थी वियो आहे एयरपोर्ट जिले अंदर एचआईवी में खतरनाक हद ताईं वाध गंबट जी गिम्स अस्पताल बि एचआईवी मरीजनि जो गढ़ बणजी वई अस्पताल अमले जे ॿिनि माण्हुनि समेत 25 ॼणनि खे एचआईवी जी तस्दीक हिकु निगरी हयाती विञाए चुकी सिहत खाते जो चवणु आहे त गुज़िरियल हफ़्ते खां अॼु ताईं एचआईवी जा 25 नवां अटाल जी आइसोलेशन वार्ड में दाख़िल कयो वियो आहे जिते हिकु निगरी फोत थी वई सिहत अख़्तियारनि मूजिबि गिम्स अस्पताल जी ॿिनि नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल अमले जे माण्हुनि में बि एचआईवी ज़ाहिर थियण बाद अस्पतालनि में इन्फेक्शन कंट्रोल ऐं ग़ैर महफ़ूज़ तिबी तरीक़नि बाबति ख़दशा वधी विया आहिनि ॿिनि महीननि दौरान 125 केसिस रिपोर्ट थी चुका आहिनि

अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में कुझु अॻभराई थी आहे। उमीद त ईरान जंग जे ख़ात्मे वारो वाइदो अॼु क़बूले वठे। थी सघे थो त अॼु सुभाणे या कुझु ॾींहनि बाद असां वटि ऐलान लाइ कुझु हुजे। हुन खां अॻु मार्को रूबियो चयो त फील्ड मार्शल सां लॻातार राब्ते में आहियूं। ईरान सां जल्द वाइदे जी उमीद आहे।

0: அஸ்ஸலாமலைக்கும். ஜிய சக்கர நவாப் எஃப்எம் 90.8 ஜூலை ஸ்டூடியோ ப்ரோக்ராம் ஹோமியோபேத்திக் ஜோ ராஸ் சேத் ஜோ ராஸ் ஹோமியோபேத்திக் சான் சான் கரே ஹாஜர் خدمت வாவா ஜோ பஞ்சோ மேஸ்பான் சரீம் அஹமத் சர்கானி மோஜோ ஆவாஸ் அவாம் ஜில்லன் வசிலே ஜிதே ஜிதே பஹுச்சே பியோ கோட்டன் வாஹன் வஸ்தன் या कोई कमकार दौरान या कोई ड्राइविंग दौरान असें बुधी रो है और सभी बुधदड़न के मुँह तरफा सिक मोहब्बत भर सलाम कबूल पवे सामिन अवजा कड़ा हाल उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ असो खोड़ सारी दुआ अवज तो जिथे वजो शादाबाद जो सदा ही खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो आमीन या रब्बल आलमीन। सकरन होम्योपैथिक हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक हाँ कें भी बीमारी का मायूस ना थो इलाज डॉक्टर कंदो शफा अल्लाह की जात दी। सकरन जो मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चर नवाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह साहबिस्त आहिनि। डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग TB हेपाटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश पुरड़ियूं बारन में कद जो न वधण मर्दन तड़ औरतन में वजन जो न वधण इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी कीरिया मेरापुर रोड नज़द बाईपास सकरन में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जुमो मोकल कंदा आहिनि हर छंछरु आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे। समिन पर हाणे जुमो मोकल कान्हे जुमे ते सुबुह जो 9 खां मंझंदि 12 वॻे ते क्लिनिक खुलियल हूंदी ऐं हर छंछरु आचर ते बि डॉक्टर साहब जी क्लिनिक खुलियल हूंदी। हिन वक़्तु जेका डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे स्टेशन रोड सकरन में डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक जे नाले सां। डॉक्टर साहब जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं। जीअं समीन डॉक्टर साहब हिन वक़्तु हिते क्लिनिक ते टाइम पंहिंजी जेका आहे वधाए छॾियो आहे टाइमिंग खे। डॉक्टर साहब जी टाइमिंग सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ताईं स्टेशन रोड हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते डॉक्टर साहब मौजूदु हूंदा। समीन इहे डॉक्टर साहब जी ॾाॾे साहिबजन जी क्लिनिक आहे पुराणी ऐं पहिरीं डॉक्टर साहब इते ई हूंदा हुआ। हिन वक़्तु बि डॉक्टर साहब पंहिंजी साॻी पुराणी क्लिनिक खे आबाद कयो आहे ऐं उते ई तव्हांखे डॉक्टर साहब सुबुह जो 9 खां शाम 6 वॻे ते उते मौजूदु मिलंदा। डॉक्टर साहब तरफ़ हलूं था उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था वधीक ऐं उन्हनि खां कुझु मालूमात बीमारियुनि जे हवाले सां वठूं था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा?
1: अलाह जो शुक्र आहे।
0: डॉक्टर साहब अॼु को तव्हांजो ॾींहुं कीअं गुज़रियो इन पंहिंजी नई क्लिनिक ते?
1: हा बिल्कुलु अॼु को जेको ॾींहुं हो असांजो बहितरीन हो शुक्र अलाह जो। पर कुझु जेका असांजा दोस्त हुआ जंहिं राति प्रोग्राम ॿुधियो त हू त वीचारा सही असां वटि अची विया ऐं कुझु जेका उहा प्रोग्राम न ॿुधिया त उहो साॻी उन एड्रेस ते असां वटि पहुची विया। त हुननि सभिनि खे चयोसीं सम्झायोसीं राति असां प्रोग्राम ने बि ॿुधायो हो ऐं अवां कॉल असांखे करे वठो हा त जंहिंसां अव्हांखे एतिरी ज़हमत खां अवां बची वञो हा। कुझु पेशंट त अहिड़ा हुआ जेका सिर्फ़ु ईअं सम्झा त असां नवाब शाह क्लिनिक शिफ्ट कयो नवाब शाह ॾिया विया पर हुतां वापसि आया आहिनि दवाऊं वठण जे लाइ। त इन लाइ असांजी अव्हांखे इहो ई एडवाइस आहे त जेॾीमहिल अव्हां अचो पिया क्लिनिक ते प्रोग्राम ॿुधो पिया FM ते त असांजी क्लिनिक ते अचो पिया त असां सां कॉन्टेक्ट ज़रूरु कयो राब्तो असां सां ज़रूरु कयो। छा आहे त अव्हां हिकिड़ो परे हलिया वञो वरी वापसी मोटी अचो त इन खां बहितरु आहे सुभाणे आचार आहे त खोड़ मुंहिंजा अहिड़ा दोस्त आहिनि जेका दवा वठण वारा आहिनि कुझु पेशंट्स आहिनि त उन्हनि सभिनी खे मां इहा रिक्वेस्ट कंदुसि त सुभाणे अव्हां जेॾीमहिल ॻोठां निकिरो त स्टेशन रोड ते अचिजो शेरवाणी गिरीअ ते न अचिजो। स्टेशन रोड ते ईंदव हिते कंहिंखां चवंदव बाबा हा डॉक्टर हाजी नाथ क्लिनिक किथे आहे हाजी इनायत राजपूती क्लिनिक थे या डॉक्टर हारिस जावेद हा मुझे नालो अना अस हलो ही ना को मुझे बाबे भी पाँच नालो न हलो तो डेमू भी उन जगह से न को मुझे नालो मशहूर आ न को मुझे बाबे त बाबा पान ही दादे जो नालो हलन पे पया हुआ थी तो इन कर मुझे नाले से मुझे केर को सुने मुख्य भी उतनी जगह सुणन था वह इनायत के नाले से सुणन था हाँ इनायत के नाले से पुछा कौ अवा के बुधा छा स्टोर वाले के चवंद नवाबशाह मोड़ से इंदा उतने पुराना स्टोर है हुसैन मेडिकल स्टोर सब खबर आ हुसैन मेडिकल स्टोर से वही चवंदा बाबा हाजी इनायत की क्लिनिक कड़े पास आई सीधो रोड वे अगत हलया वो अगत वही कें पुछा कौ अवा के बुधा छा बहरहाल नवाबशाह मोड़ स्टेशन नवाबशाह मोड़ स्टेशन के बिल्कुल विच से असि क्लिनिक मन न को घो अगत वो न को विच से क्लिनिक है रोड जो यो स्टेशन रोड सदाइबो आ शुरू का स्टेशन रोड सदाइबो आगे स्टेशन आ पर स्टेशन से ना वनो अस विच में ब्रेक लगाना उतने निम जो वण लगो पो हों हाँ उतने ब्रेक लगा वो छो तो इन रोड से एकड़ो ही निम जो वण है इन कर निम जो वण की निशानी अस कल भी दिनी अज भी दिन पे रोड से एक निम जो अगैं जो है वह है अलम लगल आ तो ये निशानी होंद अस बुधाने के हिसाब से तो इतने निम जो वण होंद ही ब्रेक लगाए कॉल कह सामू ही असा के मिलंदी बहरहाल छो तो जगह असड़ी शे खबर है गोठवारा जो हूँ उनके एकड़े चक्कर पहुँचा छो बेवारे पाने सीधो अची वा तो इन करो चक्कर इंदा तो सके अचान में थोड़ी तकलीफ थे परेशान नीजो नंबर से कॉल जरूर कजो कॉल कौ अस कॉल जरूर खासी अस अवा जरूर पुछा कदी किथे बिठा तो अस जरूर कस समझाइस अच्छा सामिन एकड़ी शे जरूर याद रखो तो उत क्लिन की टाइमिंग हुई पंजे ती तो इतने क्लिन की टाइमिंग असि छे वगे ती कि अवा निकर पाया रोड रस्ता का खतरा अच्छी वे जो टायर पंचर या का मसला मसाइल थी था वन अवा उनमें परेशान नीजो अवा अस कॉल कर अस अचू पाया रस्ते में आयो गाड़ी जो कोई मसलो थी वो या अचण में का तकलीफ थे पी तो अस पोची वेंदास पर अस टे मिनट अना लगता तो असो इंतजार भी जरूर कदूँ ये परेशानी थे तो माना गाड़ी जो मसलो थी हाँ डॉक्टर हल वो वापसी वो न उम्मीद सारे अचो पे अल्लाह अवा के खैरियत आफियत से अस पहुँचाए अवा के दवा खाओ इंशाल्लाह अवा के जरूर सेहतियाबी मिले सामिन प्रोग्राम में अज के प्रोग्राम में भी अस घनी चाहिए समझाए वासी जरदर चाहूँ पे हाँ शकरन होम्योपैथी क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथी क्लिनिक थी वही पैरी वही शहर वाणी कीरिया हाँ है स्टेशन रोड सकरन पे इंशाल्लाह कुछ वक्त में असा बोर्ड वगैरह लगी वा तो अवे के ईंद पा समझी तो हि डॉक्टर इतने वेठो आर्डर बोर्ड जो दिनल फ्रेम वगैरह जो सब शे तैयार बस बोर्ड अचान में कुछ वक्त लगे पो तो इन कर लेट से वेठ पहल इंशाल्लाह उम्मीद है तो जल्दी कम थी पव असमें प्रोग्राम में अज के जो बीमारी आ जैसे बारे में अस अवसा कुछ शूं शेयर कदासूँ अवा के उन बीमारी के बारे में जान दींदूँ तो वह बीमारी है दिमाग अच्छा दिमाग के बारे में खोड़ शूंद जैमें फॉलिज आ दिमाग की रगून दिमाग में एक पर्दो जैसे डॉक्टर से घर का बीमारी चवंदा मिनीजाइटिस उनमें पानी पैजी वे या उनमें सोच थी वे मिनीजाइटिस होंद लकवो फालिज थी तो वे उनके अलावा दिमाग की रग फाटी वे याददाश्त की कमजोरी केदी मल नंढा बार दिठा होंद तो उनका जो मथो आ शिकल का फेस का वो दिसण में इंदो तो वह पानी थी सोज वगैरह थी अंदर पर्दन में तो ये सब केस बीमारियों अज के प्रोग्राम में असाजे सेहत जो राज होम्योपैथिक सागर तो इन में प्रोग्राम में अजो को यह टॉपिक्स जैसे बारे में चयू अस जरूर शेयर कदासूँ पर इनका बेहतर एक शाँ वो याद कराए तो वनूँ तो जो बे औलाद वा तो वह परेशान न थन होम्योपैथिक दवा से इलाज कराइन इनशाला अल्लाह सही उन्होंने जरूर औलाद तो वह भी परेशान न थन अची सी टेस्ट रिपोर्टन से गड उन जो बेहतरीन मेडिसन थी अस उनके जरूर दींदूँ अल्लाह उनके शिफा जरूर दींद सामिन अज के प्रोग्राम में टॉपिक मोट तमाम वो आ देर न था क्योंकि टॉपिक की तरफ हलूँ था चुका टॉपिक अवज जो अज है वह है दिमाग के हवाले से उनमें सभी का पैं अस नंढी नंढी शन नंढी नंढी शन के बारे में समझाइंदी हल्दी वही शन के बारे में तो दिमाग में सभी का पैं नंढी में नंढी बीमारी है याददाश्त कमजोर सोच वीचार की सलाहियतू घट थी वन कें बारे में सोचूँ पा समझ में न पो अचे तो मन दिमागी कमजोरी है या दिमाग की कमजोरी है तो का शे चूँ पा तो अदा ही वही वी आने पो पर उत वही विसरी तो वे अलह चई वरी फोन कर पूछा कद वही वी दिमागी कमजोरी है हलूं पिया वञूं पिया कंहिं जॻह ते कंहिं वजह ते रस्तो में वरी कंहिं पासे ॿिए पासे निकिरी वियूं दिमाग़ी कमज़ोरी आहे याददाश्त ऐं रस्ता रोड रस्ता विसरी वेंदा आहिनि माण्हू ग़लति टर्न करे थो वञे वरी हुते बि वरी मालूमात वठे त फलाणी जॻह काॾे आहे पंहिंजो मतिलबु इहो न आहे त उहो रस्तो विसरी वियो आहे इहा याददाश्त जी कमज़ोरी आहे छो त रोड रस्ता यादि न बीठा उन टाइम ते दिमाग़ी कमज़ोरी आहे दिमाग़ बिल्कुलु ठीकु आहे इहो न त मां चवंदुसि त दिमाग़ सही कान्हे ख़राबु आहे न कमज़ोरु आहे उनखे सुकून कोन थो मिले चिड़ चिड़ माण्हू कावड़ में माण्हू थोरी का ॻाल्हि ॿुधंदो थोरी का जज़्बाती ॻाल्हियूं ॿुधंदो त यकदमि जोश चढ़ी वञनि कावड़ में अची वञनि इहो दिमाग़ी कमज़ोरी आहे सोच वीचार घणो न थी सघे याददाश्त बिल्कुलु ख़तमु थी पए दिमाग़ी कमज़ोरी आहे इन में सभिनी खां बहितरीन जेको इलाजु आहे उहा होम्योपैथिक आहे होम्योपैथिक में सभिनी खां पहिरीं इहा ई हूंदो आहे त बीमारी ख़तमु थिए सिहत बहाल थिए सिहत बहाल थी वई त पेशेंट पाण ख़ुशहाल थी सघंदो त इन करे अवां जे इन याददाश्त जी कमज़ोरी छो त घणा स्टूडेंट्स आहिनि जेका शागिर्द आहिनि उहा बि का सब्जेक्ट वग़ैरह यादि कंदा आहिनि त उन्हनि खे उहा सब्जेक्ट वग़ैरह बि विसरी वेंदा आहिनि त उहा बि दिमाग़ी कमज़ोरी आहे छो त यादि करे घरां यादि करे वञनि स्कूल पहुचनि पेपरनि में वञनि पेपर जीअं साम्हूं अचे शइ विसरी वञे दिमाग़ी कमज़ोरी आहे
0: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम बाबा केरु ॻाल्हाए पिया किथां खां
1: चाचे खे ईअं चयो त सुभाणे आचर आहे क्लिनिक खुलियल आहे अवां पंहिंजी जेका टेस्टूं आहिनि रिपोर्ट्स आहिनि जे न आहिनि त पोइ तव्हां पाण ऐं चाची तव्हांजी ॿई अची सघो था क्लिनिक ते अचण सां इहो फ़ाइदो थींदो अचण सां इहो थींदो त कंहिं में कमज़ोरी आहे छाजे करे न पियो थिए उहा सभु असां हिसाबु किताबु चेक कव कप करे अव्हांखे ॿुधाईंदासीं अल्ट्रासाउंड हिते ई असांजे ऐं क्लिनिक ते अची विया त हाणे अल्ट्रासाउंड सम्झो असांजे लाइ वेचू थी वियो साम्हूं बसि रोड ते पवंदो अल्ट्रासाउंड वारा वेठा त उहा बि अव्हांखे अल्ट्रासाउंड बि थी सघे थो लेडीज़ जे जेको मसला थींदा आहिनि बीमारियूं थींदियूं आहिनि उन जे बारे में असां ज़रूरु ॾिसंदासीं जे असांजो कमु थी वियो त बहितर आहे न त हुते ई लेडी डॉक्टरनी वेठियूं आहिनि रेफर कंदासूं पर्चो ठाहे ॾींदासीं जेका तव्हां वेंदा हुओ त उहा तव्हांखे रिस्पेक्ट ज़रूरु ॾींदी परेशान न थियो वे औलाद आहियो अलाह ज़रूरु तव्हांखे ज़रूरु औलाद ॾींदो सभिनि प्रोग्राम में जेको टॉपिक आहे याददाश्त जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाए रहियो हुउमि त कुझु स्टूडेंट्स आहिनि जेका सब्जेक्ट वग़ैरह यादि कंदा आहिनि त वरी पेपर में या कंहिं जॻह ते वञी वरी क्लास में हुजनि था त उहा विसरी था वञनि या टीचर साम्हूं चवे पियो त बाबा हीउ सवाल जो जवाबु फलाणो ॾींदो पर जीअं उहो चवे थो हा मुंहिंजी वारी अची वई जीअं उथंदो अड़े राति त यादि कयो हीअं दिमाग़ में अचे ई न पियो हाणे ॿ टे डंडा टीचर खां खाए वरी वेही थो रहे पोइ यादि थो अचे साईं सवाल का जवाबु ॾिए था त इन जो मतिलबु इहो आहे त याददाश्त जी कमज़ोरी आहे इन जो इलाजु थींदो इलाज खां पोइ इहा सभु शयूं ख़तमु थी सघनि थियूं छो त इहा जेका शइ आहे न इहा अॼु जे प्रोग्राम में इन शइ खे मां हाईलाइट इन करे कयां पियो त कुझु माउ पीउ जेका आहिनि उहा पंहिंजे नंढिड़े ॿारनि ते ग़ौर नथा कनि उन जी पढ़ाई ते ध्यानु नथा ॾियनि ॿार ॾिसूं पिया त ॿार पढ़ाई में पोइते वञे पियो उन जी वजह आहे असल में छा उन शइ खे माण्हू ग़ौर करे स्कूल में पढ़ाई त सभिनी जॻह ते सुठी आहे मां का ख़राबु कंहिंखे न चवंदुमि सभिनी जॻह ते सुठी आहे मूं खोड़ अहिड़ा माण्हू ॾिठा आहिनि जेका सरकारी स्कूल में पढ़ी अॼु कंहिं सुठी नौकिरी कनि पिया इन करे सरकारी जी पढ़ाई ख़राबु कान्हे का हर इदारे में कंहिं न कंहिं शइ ते कंहिं न कंहिं शइ ज़रूरु सेखारी वेंदियूं आहिनि त इन करे प्राइवेट या गवर्नमेंट सभु हिकु जहिड़ा आहिनि पर ॿार पढ़े न पियो कामयाबु न पियो थिए नंबर एग्ज़ाम अचनि पिया नंबर घटि अचनि पिया ऐं पढ़ाई तरफ़ ध्यानु कोन्हे त उनमें का न का वजह आहे उनमें दिमाग़ी कमज़ोरी बि वजह हिकिड़ी आहे उनजो माण्हू इलाजु कराए सघे थो दवाउनि सां उनजे इलाज सां बहितरु फ़ाइदो थींदो ऐं उहा जेका पंहिंजी पढ़ाई आहे उहा सुठे करे वेंदो अॻिते कामयाबु थी सघे थो इहा माउ पीउ खे सोचिणो आहे त उहा इन ॻाल्हि ते ज़रूरु ख़्यालु कनि नंढिड़ा ॿारनि हींअर पढ़ी वेंदा अॻियां अवां जे लाइ ऐं उन्हनि जी ज़िंदगीअ जे लाइ ज़रूरु कमु ईंदो त इन करे ख़्यालु कयो जे इहा शयूं महसूसु थियनि पियूं त इलाजु कराए उन शइ खे ख़तमु करे छॾियो होम्योपैथिक में जेका ॻाल्हि थी वई त हाणे ॻाल्हि ज़हन में अची वई त होम्योपैथिक में हिन चैप्टर जे लाइ हिन विषय जे लाइ अलॻि हिकिड़ो असांजे वटि लेक्चर्स थींदा आहिनि उन में इहा चवंदा आहिनि त स्टूडेंट खे तव्हां सभु पंहिंजे वटि पाण वटि विहारे छॾियो माउ पीउ ॿाहिरि कढोसि अकेलो विहारे छॾियो ऐं स्टूडेंट सां क्वेश्चन आंसर कयो त बाबा मसिलो छा थिए थो अवां सां जेॾी महिल अवां कुझु स्टूडेंट अहिड़ा आहिनि त जेॾी महिल आवाज़ जो दबाउ फलाणो त हू उथण खां ॾिके पियो खौफ़ महसूस करे तो इन इन में अवां जेको आहे ॿार में सलाहित घटि आहे। का टीचर चए थो भई फलाणो अहमद खान वठी वञे, सलीम साहब सलीम उथ इन सवाल जो जवाबु ॾे, इहा छा आहे, या ब्लैक बोर्ड ते अचे असां वटि हेॾा साम्हूं अचे इन सवाल जो जवाबु हिन बोर्ड ते लिखो, त उहा ढके थो, ख़ौफ़ थो खाए, अड़े अलाए छा थींदो मूंखे ख़बर न आहे। इहा कमज़ोरियूं आहिनि इन्हनि जो, हींअर ई कनि शइ खे तव्हां ॾिसी करे जो इलाजु कराए वेंदव त अॻियां जेका कॉलेज में वञे, यूनिवर्सिटी में वञे, अलाह उन्हनि खे तरक़ी ॾिए, कई वञे त उन में एतिरी एबिलिटी हुजे की सुभाणे उन जेका शइ जी उनखे डिमांड मिले त उहो उन डिमांड खे पूरी करे। इहा हाणे खां तव्हां इन शइ ते एहतियात कयो। स्कूल में पढ़ाई ते ध्यानु कोन्हे, वजह छा आहे, असां डॉक्टर जंहिं महिल पढ़ंदा आहियूं पेशंट सां वेही इन हवाले सां राब्तो कयूं, पोइ ख़बर पवंदी आहे त वजह छा आहे ऐं छाजे करे उहा पोइ ते रहिजी थो वञे।
0: डॉक्टर साहिबु कॉल वठो था, केरु असां सां गॾु आहिनि? अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: बाबा केरु ॻाल्हायो पिया, किथां खां?
1: गड़बड़ करे वञो उन खां पोइ रहंदो तव्हांजी बांह ख़राब थिए, ज़ख़्म ख़राब
0: थिए, इहो बि त ख़बर न आहे त फट केतिरो आहे, कीअं
1: नासूर थी वियो आहे, अंदरि सुई रहिजी वई, निडल रहिजी वई, या दवा सही न हुई, सुई हॾ में वञी लॻी आहे, उनजे करे थियो आहे, खोड़ अमा शयूं आहिनि। हर शइ खे माण्हू ॾिसी करे पोइ सां सही दवाऊं ॾियनि त जंहिंसां अव्हांखे फ़ाइदो बि थिए। हाणे होम्योपैथिक में अव्हांजे इन शइ जो इलाजु कराईंदो असां वटि थी सघे थो, इहो न कोन थो थी सघे, पर असांखे अव्हांजो हिकिड़ो ॿांह जो कारो फोटो कराइणो पवंदो, जंहिंमें हॾे जी हालति छा आहे उहा ॾिसणी पवंदी। ज़ख़म जे हॾ खे लॻी वियो त सम्झो असां ओॾी महिल अव्हांखे चवंदा अमां असां वटि इलाजु कोन्हे, जे हॾ बची वियो आहे त पोइ असां इलाजु शुरू कंदासीं, इहा शइ ॻाल्हि ज़हन में रहे। इहा छा आहे त इहा अव्हांखे ॿुधाइण जो मक़सदु इहो न आहे त अव्हां ख़ौफ़ ॾे अचो, न, इहो ॿुधाइण जो मक़सदु आहे त अव्हां इन शइ खे सीरियस वठी इलाजु कराए वठो। डॉक्टर सां थी सघे अव्हां इलाजु करायो पिया, इहो न तव्हां इलाजु न पिया करो, कराईंदा हूंदा, पर हिन शइ खे जीअं असां बारीकी खां हर शइ खे ॾिसंदा आहियूं न, ग़ौर सां ॾिसंदा आहियूं, ज़ख़म थी वियो आहे, हॾ थी वियो आहे, सुई छा में लॻी, हॾ में लॻी आहे या सुई ग़लति लॻी आहे, हीअ सभु शइ ॾिसी करे पोइ का दवा सलेक्ट कंदा आहियूं त हीअ दवा ॾियणी आहे, तयारु थी पवंदो।
0: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम।
4: सर वालेकुम सलाम।
0: उदास इमाम बख्श की रहो?
4: जी सर।
0: बाबा छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ख़ैरु आहे?
4: ख़ैरु थिया, तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं?
0: ख़ैरु लॻो पियो आहे, अलाह जा एहसान। छा था पुछणु चाहियो डॉक्टर साहब खां?
4: सर मथे में सूरु आहे पर पोयां खां।
0: अच्छा कहिड़ी खां?
4: जी हा सर।
0: कॾहिं खां वठी सूरु पियो अथई?
4: ॿ ॾींहं ते थी आहिनि।
0: हलो अलाह रहम कंदो, FM ॿुध, डॉक्टर साहिबु ॿुधाए थो। अजय डॉक्टर साहिबु, उदास इमाम बख्श कीरे साहिब खे मथे में सूरु आहे।
1: उदास साहिबु तव्हांखे मां इहो ई चवंदुमि त पहिरीं तव्हां पंहिंजो ब्लड प्रेशर चेक करायो, शुगर चेक करायो, थी सघे गर्मी में विया आहियो, तव्हां जिस्म में निमकिया जी कमी थिए पई, जंहिंजे करे इन्हनि ॿिन्हिनि शयुनि जी या त वधीक थी वियो आहे, घटि थी वियो आहे, उहा वेझी खे डॉक्टर सां अवां चेकअप कराए छो त सलीम साहिबु अव्हांखे चवंदो बि आहे त क्लिनिक ते अचे दवा चेकअप करा, दवा खणु डॉक्टर तोखां पैसा चवे त मां पाण ॾींदुसि, त बि तव्हां कोन था अचो। हाणे तव्हां आया आहियो न, पहिरीं मां पैसा वठंदो पोइ दवा ॾींदुसि तव्हांखे, पोइ तव्हां ईंदव। हिन करे बहितर आहे तव्हां पंहिंजो ब्लड प्रेशर ऐं शुगर चेक करायो, घटि आहे त उनजे लाइ दवा, वधीक आहे त पोइ उनजे लाइ दवा वठो, इहा शयूं गुम थी पवंदियूं। समिन प्रोग्राम में अॼोको टॉपिक जे हवाले सां दिमाग़ी यादाश जी कमज़ोरी ते असां बहस कयूं पिया, अव्हांखे सम्झायूं पिया कुझु शयूं आहिनि जेका अव्हां ज़रूरु सम्झो, इहा शयूं अव्हांजे लाइ बहितर आहिनि। उन में कुझु स्टूडेंट्स हुआ, शागिर्द हुआ, उनजे बारे में अव्हांखे लाइ सभु शयूं असां रखियोसीं साम्हूं। का अहिड़ी शइ महसूसु थिए पई त उनखे वक़्तु आहे, हींअर टाइम आहे इन शइ खे इलाजु कराए उन शइ खे ख़तमु कयो, सुभाणे तव्हांजो ॿार बचो कामयाबु थी सघे। उन खां अलावा कुझु असांजा कारोबारी अफ़राद आहिनि, कारोबारी अफ़रादनि त उहा बि इन बीमारी में ज़रूरु मुबतला थींदा आहिनि। वजह छा आहे त रश आहे, बोझ घणो आहे ऐं कमु तमामु घणो आहे त दिमाग़ खे सुकून कोन्हे को, जंहिंजे करे कम में एबिलिटी कमु जेको मुकमल न पियो करे सघनि। छो त तव्हां पाण हिकिड़ी शइ नोट कई हूंदो त कारोबारी आदमी आहे, उनजो दिमाग़ु हमेशह तेज़ु हुअणु खपे, पोइ बि छा कंदा आहिनि कैलकुलेटर पिया हूंदा हुतां खां वरी टोटल कंदा आहिनि, ऐं घणा करे अहिड़ा ॾिठा आहिनि माण्हू त पैसा अबा 4,500 रुपया थी विया, हाणे उनखे ॾिनासीं 5,000 रुपया, हाणे हू छा कंदो 5000 मां 4500 रुपया कटी बकाया घणा बचंदा उहा ॾींदो। माना एतिरो ज़हन कमु नथो करे त यार बकाया 500 बचाइनि मां ॾेई छॾियां, न कैलकुलेटर में हणंदो हिसाबु बाबा 5000 थी विया माना 4500 बचिया 500 रुपया थी विया। इहा छा आहे, दिमाग़ी कमज़ोरी आहे, यादाश जी कमज़ोरी आहे, त इन जो इलाज सां इहा शइ ख़तमु थी सघे थी। उन खां अलावा असां कोशिशि कयूं पिया अॻिते वधण जी, कारोबार वधाइण जी कोशिशि कयूं पिया, पर असां में कोशिशि कयूं पिया, सिर्फ़ु कमु कयूं पिया, नुक़सानु थिए पियो, वधण जी कोशिशि कयूं, वापसी पोइ ते धिको अचे पियो। इन जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हांजे मथां का शइ थी वई आहे, बंदिश वग़ैरह जी चवंदा आहिनि न, उहा थी वई आहे, इहा शइ कान्हे का। हिन में छा आहे, अवां पंहिंजे पाण में जीअं चवंदा आहिनि, पंहिंजे गिरबान में ॾिसो, पंहिंजी ॻिचीअ में ॾिसो, गिरबान में उर्दू में चवंदा आहिनि, त उन में छा आहे, अवां अॻिते वधण जे लाइ अवां में सलाहियतूं आहिनि, अवां में एतिरी सहप आहे त अॻिते कमु वधायूं त उनखे संभाले सघंदव। त इहा शयूं जे आहिनि त कारोबार पाणे पाण अॻिते वधंदो, जे इहा शइ न आहे त तव्हांखे लॉस थिए पियो, हाणे कमु वधाओ पिया त लॉस थिए पियो, कमु वधाओ, ऐं वजह छा आहे, दिमाग़ में कमज़ोरी कोन्हे को, सम्झ में न पियो अचे त हाणे कमु कीअं कबो ऐं कीअं इनखे संभालबो। हुनजे लाइ पोइ वरी नौकर वग़ैरह घणा रखणा पवंदा आहिनि, माण्हू रखणा पवंदा आहिनि, पोइ हुननि खे पघार साॻियो जेको लॉस थियणो हूंदो उहो पघारनि में लॉस थी थो वञे, ॻाल्हि त हिकिड़ी थी वई, हितां वठो कन खे या हुतां वठो, पर यादाश जीअं सेट थींदी हर शइ सेट थी थो वञे। अवां पाण हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कयो त असां वेठा आहियूं हिन शहर में, असां अॻिते वधण जी कोशिशि कयूं पिया, पर पोइते हीअ जेका कराची हैदराबाद में एतिरी वॾी वॾी बिल्डिंगूं ठाहे विया आहिनि, इहे कीअं ठाहे विया, इहा उहो त माण्हू आहिनि, इहा बि त इंसान आहिनि, इहा त असांखे पाकिस्तान में रहनि था न, के ॿिए पासे था, इहे साॻी मानी खाईंदा, इहे साॻियो अन खाईंदा आहिनि, ॿियो का ॿी काशे था कोन था खाइनि, पर छो, वजह छा आहे त उहो पंहिंजे पाण खे नंढी उमिरि खां ई पंहिंजे पाण खे एतिरो क़ाबिल ठाहियो आहे त सुभाणे की असां कंहिं हम कमु कयूं, का शइ का बिज़नेस वग़ैरह कयूं त असांजो माइंड सेट हुजे, त हिन कम खे कीअं हलाइणो आहे, तजुर्बो हुजे। उनजे लाइ असां हींअर ताईं पंहिंजे नंढड़नि खे कोशिशि कंदासीं, पढ़ाई कयो पिया सुठो आहे, कामयाबु थियणो आहे त पढ़ाई करे वठो, की पढ़ाई नथा कयो त कारोबार शुरू कयो, हींअर खां तव्हां हुनखे कारोबार सेखारींदव, कोशिशि कयो त पढ़े वञे, पढ़ी वञे त अञा अॻिते सुठियूं पोस्टूं मिली सघनि थियूं, पर छा आहे त का बीमारी आहे, कमज़ोरी आहे, यादाश जी कमज़ोरी आहे, उनजो इलाज करायो, फस्ट क्लास थी सघे, कंहिं वॾी नौकिरी सरकारी नौकिरी मिली वञे पंहिंजे पाण ई, त उहा बहितरु आहे न, त इहा नथो थी सघे त उनखे कारोबार में वांदा घर में न विहारियो, वांदा वेहंदा ऐं हुननि जी जेका सलाहियतूं आहिनि उहा सफ़ा ख़तमु थींदी वेंदी, पोइते थींदा वेंदा, पोइते थी वेंदा ॿार बच्चा कोई घणा करे, त ईअं नशो जेको आहे न, नशे वारी आदत नौजवाननि में हितां ई शुरूआति थिए थी, वांदा वेठा आहिनि, पोइ दोस्त संगत में निकिरनि था त पोइ कुता न कुता आहिस्ते आहिस्ते शयूं शुरू थींदियूं। पंहिंजे पाण खे पंहिंजे औलाद खे इन्हनि शयुनि खां बचायो, इहा शइ नुक़सानदेह आहिनि, अव्हांजे लाइ सिहत जे लाइ बि नुक़सानदेह, अव्हांजे खाधे जे लाइ, अव्हांजे घर जे लाइ बि नुक़सानदेह, हिकिड़ो खाईंदो वरी ॿ टे चारि ईअं लाइन शुरू थी वञनि। इन्हनि शयुनि खां एहतियात कयो, कमु कार में लॻाए छॾियो, मज़दूरियुनि ते कंहिं शइ ते उनखे लॻाए छॾियो, ॿनी बार ते उनखे लॻाए छॾियो, कंहिं शहर में कंहिं सुठी जॻह ते दुकान ते को वास्ते वारा हूंदा आहिनि त पोइ उते कम ते लॻाए छॾियो। इन सां छा आहे त उहो शयूं सिखंदो, उनजे दिमाग़ में कुझु शयूं ज़रूरु ईंदियूं त कारोबार ईअं कीअं हले पियो, कीअं सहे पियो, उहो सभु शइ सिखी पंहिंजो कारोबार खोले वेंदो, सुभाणे कामयाबु थींदो, अव्हांखे दुआऊं ॾींदो।
0: डॉक्टर साहिबु कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अदा वालेकुम अस्सलाम, केर ॻाल्हायो पिया, किथां खां? अजी मुंहिंजा भाउ, छा सवाल आहे डॉक्टर साहिब
3: लाइ?
0: अच्छा, कॾहिं खां वठी छिकी आहे मुंहिंजे भाउ खे? कॾहिं खां वठी छिकी
3: आहे?
0: अच्छा, ठीकु आहे, दादा एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु ॿुधाइनि था। जी डॉक्टर साहिबु,
1: साईं छिकीअ जो धारो मदार थींदो आहे माइते ते गरमाइश, माइते ते कमज़ोरीअ सां, इहो हकीम तव्हांखे ॿुधायो अलाए न ॿुधायो, असांखे ख़बर कान्हे का, पर असुलु वजह इहा ई आउंदी आहे, मादो कमज़ोर ऐं मादे में गरमाइश, का बि गर्म शइ खाई वियासीं या मानी जे लेट सवेर थी वई, गर्मी में निकितासीं, छिकी चालू थी पवंदी, ऐं छिकी चालू थी पवंदी पोइ अवां इहे सभु तकलीफ़ूं थी पवंदियूं। इन लाई बहितर आहे अवां थधी शयूं इस्तेमालु कयो, साई भाॼियूं इस्तेमालु कयो, पाणी जूस वग़ैरह इस्तेमालु कयो, बाक़ी जेका मेडिसन्स आहिनि, दवाऊं आहिनि, उहा अवां इस्तेमालु कंदव, होम्योपैथिक वारी इस्तेमालु करे सघो था, इन सां अव्हांजी जेका छिकी गुम थी वेंदी इनशाला।
0: जी हा समिन, शफ़ा ॼण अलाजी ज़ात जो कमु हूंदो आहे, डॉक्टर हिलो वसीलो हूंदो आहे। समिन, होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में कोई साइड इफेक्ट कोन्हे, डॉक्टर साहिबु ख़ानदानी डॉक्टर आहिनि ऐं होम्योपैथिक जे लाइ डॉक्टर साहब जो सुठो तजुर्बो है और डॉक्टर साहब पान लेक्चरर पण आहिन समय डॉक्टर साहब जी क्लिनिक हाँ जी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में डॉक्टर साहब क्लिनिक ते मौजूद होंदा आहिन सुबुह जो 9 का शाम 6 वगे ते डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जी टाइमिंग है मोबाइल नंबर 0327984768 2 3 2 7 8 9 8 4 7 6 3 जी हाँ समीन यो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर है तव इन कॉल कर डॉक्टर साहब का लाइव सवाल पूछी सकता हो क्लिनिक ते भी डॉक्टर साहब वो ही नंबर मौजूद होंद है समीन में हमेशा वहाँ है तो पंजो ख्याल रखना कयो पंजी सेहत जो ख्याल रखना कयो पंजन घरवारन जो पंजन बारन बच्चन जो पंजन बारन बच्चन जो भी ख्याल रखना कयो समय बीमारी अचे तमाम जल्दी थी वने ता डाढ़ी दुखी थी तो इन लाइ अजकल जो दिसो था पा महंगाई जो हिसाब किताब इलाज हर शे महंगी थी वही तो उन पो ख्याल रखो एक्स्ट्रा खर्च कर पान के बचा डॉक्टर साहब कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम सलाम
0: अदा केर गलाए पे किथा का जिले सांगर का जी मुझे भा केर पे गलायो
5: साईं अम्मा जी जी तबीयत ठीक ना है सा डॉक्टर साहब से मैं खबर बुधो तो आ सब पूछो
0: अच्छा अम्मा के छा थियो दादा
5: साईं अम्मा जो दिमाग में तेरे कन में सूर
0: अच्छा दिमाग में सूर
5: कन में सूर डॉक्टर साहब पता है डॉक्टर के चो ता पर्दे में सुराख आ के चो ता नस कमजोर आ नवाब शाह सागर सक्कर इलाज करा कर मजबूर थिया सा
0: अच्छा कन में सूर खत्म कर दो थे
5: हाँ वरी छा थो तो सजे मथे में जी जार मू तड़े शुक धले तो कमजोरी जाम
0: अच्छा
5: जी जी
0: अच्छा जी अम्मा के अम्मा के छा में
5: खाए तो को सकून आ थोरो न काल पुरो
0: अम्मा के छा में से तो कनन में आवाज अच्छे तो
5: जी साईं
0: अम्मा के कनन में आवाज अचन था
5: साईं अम्मा जो कन में पेरो सूर हो
0: न अम्मा के आवाज वगैरह कन में अचन था अच्छा चले कोई मसलो को नहीं था एफएम बुधो डॉक्टर साहब जी जी जी
5: मैं बुधा तो साईं मैं बुधा मैं बुधा
0: ठीक है एफएम बुधो डॉक्टर साहब बुधा था अजय डॉक्टर साहब
1: साईं अम्मा के हवाले से जो अवे सवाल हो उन में अवे ये तो अम्मा के कनन में आवाज़ थे पी ए मथे में सूर थे पो डॉक्टर्स बटे गाल चन पे मन एक गाल पा कन जैसा समझ में न पो अचे तो अम्मा सा मसलो असल में आहे चा मन चवण जो मतलब यो इन इन सभी गाल में एक गाल असा मेन है वह समझ अचे पे तो डॉक्टर अवे अम्मा की बीमारी से पौता ही को बेहतर रहो अवं खी अचो चेकअप कराए वो इनशाला को को रस्त जरूर डींदूँ
0: डॉक्टर
1: साहब को रस्त जरूर डींदूँ
0: डॉक्टर साहब जी जी जी डॉक्टर साहब

0: ఇదని మస్తోయి నవాబ్ సామా
1: अजयदा छा सवाल डॉक्टर साहब ला
0: सर जे तन सवाल ही आए ते संजनड़ी भेण आयो ने सर नक में रात ही न करिया आई सबो सवाल आए ते जे तन सीधी छोकरी आए तन के सरन जे मैदे में थोड़ी गरमाश थी या आई उनका को थोड़ी बात माल के हल्की रत ही जाती छा जे करे आए
1: ठीक आ ठीक आ एफएम तो डॉक्टर साहब बुधाइन था अजय डॉक्टर साहब एकड़ी नंडड़ी के नाकेल इंदी आ बी नंडड़ी के वात में ब्लड अचे तो मैदे जी गरमाश खा पो जी डॉक्टर साहब
2: बिल्कुल ऐसो हाँ समझाने के लिए ब गाल अवजों एक तकलीफ है तो एक नक मारत अचे पे एक वात मारत अचे मन ब बीमारियों असर एक कॉल रिसीव क्यों था इन सवाल जो जवाब दूँ छो तो गाल कुछ मुझे समझानी पवी टाइम लगी वो
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम कैसा
1: हाल साईं तुम अल्लाह जायसान केर गलाय पे किथा का
0: वा केर का गलायो साईं
1: साईं तमा केर पे गलायो किथा का सलीम गलाय पयो
0: अच्छा साईं ठीक ठीक मा थमेल खा तो गलाया अब्दुल सत्तार नालो आ बाबा
1: अजी साईं हुकुम कयो छा सवाल आ वाजो डॉक्टर साहब ला
0: डॉक्टर साहब सारदा तो साईं तबीयत सही न तो रहे तेरा माता दे साल के डॉक्टर साहब से अच्छो
1: जी जी
0: अल्लाह खैर करे सब जो असाईंदासी नंबर ते आ कम किया साईं
1: जी जी नंबर वाइज सिस्टम हुंदो आहे तवां वटि यो जो नंबर जेते कॉल कई आहे डॉक्टर साहब वटि क्लिनिक ते यो नंबर मौजूद हुंदो आहे तवां सठ मेल खां अची डॉक्टर साहब खां इलाज करायो इंशाल्लाह ज़रूरु सहतियाब थींदो शफ़ा ॾियण अलाह जी ज़ात जो कमु हूंदो आहे
0: ठीकु आहे साईं महिरबानी
1: ठीकु आहे इन नंबर ते राबितो कजो जी डॉक्टर साहब सवाल जेके हुआ भाउ साजिद जा जी सर
2: बिल्कुल भाई साजिद जा सवाल हुआ ब सवाल हुआ एक जी नंढड़ी आने नक मर अचे पे एक वात मार अचे अरे साजिद भाई इनमें कुछ शूँ नोट कजोस रत अचे पे नक में पहले नक वाले रत की गाल क्यों था नक में रत अचे पे तो उनमें वजह चाहे तो जी एक स्कूल का अचे पी पढ़े या का गर्मी में अचे पी तब रत अचे पो तो समझो का खतरे की गाल कान्ने का परेशान थे का गाल कान्ने का या गर्मी लगे पी उन्हें जो रत अचे पे तो उनमें तो समझो सफा सवलो कम आसान बाकी जेका रत अचे पे गर्मी में न पो अचे घर वेठी आ पखे जेठ वेठी आ तब रत अचे पो तो यहाँ है नक के अंदर इन्फेक्शन थे जख्म थे हाँ वो छा में थे यहाँ चेकअप का ही अल्ट्राइन या फोटो निकरंदो उनका समझ में इंदो इन जगह से जख्म थी वो है छो तो पुराना गाढ़ा वगैरह थन्दा मगज़ में उनके करे यह तकलीफ थी पवी है एतरी का खतरनाक कान्ने का पर यह बीमारी है सही बाकी जो वात रत अचे पो उनमें मादे में जख्म थी सके तो उनके अलावा गलो उनमें कें कें जगह इन्फेक्शन थी सके तो उन रत अची सके तो उन्हें जो इलाज जरूर कराणो ही इलाज जरूर कराए तो ये रत अचे पो इन असो पव छाला अचे पो इन में ब गाल बिन्हीं में ब गाल नोट कर मोड़े अचो तो रत जो कलर कड़ो आ कारो या गाढ़ो ब शूँ नोट कजो केडी मल अचे पो यह शे नोट कर क्लिनिक अची वो
1: जी असमीन अवां बुधो पिया जी सकर नवाब शाह एफएम 90.8 जे लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक प्रोग्राम सेहत जुर्हाज होम्योपैथिक साण डॉक्टर साहब जी क्लिनिक जो नालो है हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक असमीन कॉल वठूं था केर से सगर मौजूद नहीं किथा का अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम अस्सलाम सलीम क्या हाल आदा
1: साईं दुआऊं वाला जयसान तां बुधायो ठीक आहियो सिकंदर साहब
3: सिकंदर मंसी थो ॻाल्हायां 0.5
1: हा जी जी साईं छा सवाल आहे डॉक्टर साहब ला
3: हा डॉक्टर में सलीम सूर नथो थिए ॿिन डॉक्टर में हेठी मथी
1: अच्छा ॾाठ
3: जी हा
1: हेठी ॾाठ बि मथी बि साॻे हंधु ई
3: हा साॻे हंधु उन ॾाठ जे आम्हूं साम्हूं हेठी बि ऐं मथी बि ऐं फ़ाइदो बि सही न आहे ऐं डॉक्टर जी का पेरनि ते सोज ॿुधाई न
1: जी जी ठीक
3: है
1: एफ एम बुध डॉक्टर साहब बुधाइन था जी डॉक्टर साहब भाऊ सिकंदर जो सवाल
2: साईं सिकंदर मुकद्दर जो सिकंदर साईं
1: जी
2: अवां
1: मुझे माइट भला चवा
2: माइट तवाजो
1: जी डॉक्टर साहब
2: साईं अवां मां के चवंदो डाठ में सूर थियो आहे न उनमें खाधल आ कीड़ो लगल आ वजह थी सकन थी उनके करे सूर थे पो तो माण्हू उन तकलीफ़ का इलाज कंदो जी उहा शइ कान्हे का अंदरि जेका रगूं हूंदियूं आहिनि पहाड़ में उन जे करे सूर थिए पियो त उन जी दवा थी सघे थी पर हाल इन में त अव्हांखे बहितरु रहंदो की दंद वारे डॉक्टर खे ॾेखारियो त सुठो रहंदो

0: ॾिसी करे तव्हांखे ॿुधाईंदो हा तव्हांखे इहो मसइलो आहे या तकलीफ़ आहे इन जे करे थिए पियो। पर उनखे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में विहारजोसि त मूंखे पहिरीं हेपाटाइटिस थियलु आहे, मादे जी मूंखे तकलीफ़ थियलु आहे, मूंखे गरम दवाऊं तेज़ दवाऊं मूंखे न ॾिजो। इहा शइ तव्हांखे मां हींअर ई ॿुधायां पियो छो त मूं मस्तु तव्हांजो इलाज करे तव्हांखे तयारु कयो। वरी तव्हां बीमार थी वञो, इन खां बहितर आहे त इहा शयूं डॉक्टर खे तव्हां ज़रूरु ॿुधाइजो।
1: डॉक्टर साहब कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा केरु ॻाल्हाए पिया किथां खां? हलो अदा, मुंहिंजी कॉल रिसीव थी चुकी आहे। हलो अव्हांजो आवाज़ु कोन आयो तॾहिं कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। बराए महिरबानी उहे कॉल कंदा कयो जिन्हनि जो डॉक्टर साहिब खां सवाल पुछण जो इरादो हुजे ऐं सवाल ई पुछणो हुजे। डॉक्टर साहिब कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: दुआ ओला जाए छा तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु आहियो? चलो को मसलो कोन्हे को, तव्हांजी टेस्ट ठीकु आहे।
2: जी जी
1: ठीकु आहे साईं। तव्हां FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु अव्हांखे ॿुधाइनि था। जी डॉक्टर
0: साहिबु साईं, अव्हांजी जेको सवालु आहे न इहो ख़तरनाक सवालु आहे, त इन में कुझु शयूं मां FM ते लाइव ॿुधाए सघां थो, कुझु शयूं मूंखे लिखाइणी पवंदियूं। हुन में कुझु शयूं वजूहातनि जो फैमिली प्रोग्राम हूंदो आहे त कुझु शयूं मां ओपन कंदुसि, कुझु शयूं रहिजी वेंदो। बहरहाल अव्हां जेके सुभाणे क्लीन ते अचो था त रूबरू अचो था त उहो अञा बहितर शइ आहे, त असांखे हर शइ अव्हांजी सम्झ में पहुची वेंदी।
1: बाक़ी तव्हांखे इहो ज़रूरु ॿुधायूं था त डॉक्टर साहिबु वटि बेओलादनि जे लाइ ऐं कामयाब तजुर्बे सां गॾु इलाजु आहे, जंहिंमें डॉक्टर साहिब जो पंहिंजो जेका आहे ईअं सम्झो PhD थियल आहे ऐं बेओलादी जे हवाले सां डॉक्टर साहिबु मशहूरु ऐं मारूफ़ आहिनि। औलाद ॼण अलाह जी देन आहे। अगरि तव्हां में तव्हांजे घर वारे में कोई इशू आहे उहो अलाह जे हुकुम सां ख़तमु थी सघे थो। उन खां पोइ औलाद अलाह अता ज़रूरु कंदो। डॉक्टर साहिबु इन मामलात में मशहूरु मारूफ़ आहिनि। डॉक्टर साहिब जो हिकिड़ो कामयाबु तजुर्बो काफ़ी मरीज़नि ते थियल आहे, त तव्हां अची डॉक्टर साहिब वटि क्लिनिक ते अची मशवरो करे सघो था। इन मौज़ू ते वधीक FM ते असां नथा ॻाल्हाए सघूं, उन शइ जी माज़रत। डॉक्टर साहिबु वधीक कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबु कॉल ई डिस्कनेक्ट थियो। जी डॉक्टर साहिबु अधे जो जेको सवालु हुन बारे में थोरी तव्हां आगाही ॾियो। जी डॉक्टर साहिबु
0: साईं अव्हांजो बसि मां अव्हांखे इहो ई चवंदुसि त तव्हां सुभाणे अचो, पोइ वधीक जेको आहे रूबरू वेही थींदो। जेका फीमेल आहे तव्हांजी उहा अची वञे त अञा बहितर आहे, वधीक साम्हूं ईंदव पोइ ई असां अव्हांखे कुझु शयूं सम्झाए सघूं था। शयूं कुझु अहिड़ियूं आहिनि जेको असां नथा ॿुधाए सघूं, छो त कल्ह को प्रोग्राम थियो हो त उन में मूं कुझु अहिड़ा वर्ड्स इस्तेमालु कया त जंहिंजे करे मूंखे कुझु कालूं आयूं, त हुननि चयो यार इहा शयूं न कयो साईं, अव्हांजो प्रोग्राम घर में हले थो त इहा शइ सही न आहे। मुंहिंजो ठीकु आहे, असांजी कोशिशि त इहा ई हुई त कुझु अल्फाज़ अहिड़ा हुजनि त जेके कंहिंखे बुरा न लॻनि, कंहिंखे लॻी विया त कंहिंजी कंप्लेन अची वई त असां इन करे अव्हांजे सवाल जो जवाबु हज़म करे तव्हांखे कोन था ॾेई सघूं।
1: डॉक्टर साहिब कॉल वठूं था। केरु सां गॾु मौजूदु आहिनि, किथां खां? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबु कॉल ई डिस्कनेक्ट थी वई, शायदि मुंहिंजो भाउ या को मुंहिंजी भेण कॉल करे पई, जिन्हनि जो नेटवर्क जो इशू आहे या त पोइ उन्हनि जो वटि जेको आहे त सिग्नल जो मसलो आहे या उन्हनि वटि कुझु बि आहे, बहरहाल उन्हनि जो आवाज़ु असां वटि न पियो अचे। सामिन अव्हां डॉक्टर साहिब जो प्रोग्राम ॿुधो पिया। प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण करे हाज़िर ख़िदमत अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी। समिन असांजे डॉक्टर साहिब जो अव्हां सां गॾु साथ हूंदो पूरे 9 वॻे ताईं। अव्हां डॉक्टर साहिब खां सवाल पुछी मालूमात वठी सघो था। सर कॉल वठो था। अस्सलाम वालेकुम।
3: हलो अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम। साईं केरु ॻाल्हायो पिया किथां खां?
3: साईं ॻाल्हायूं पिया सराड़ी खां।
1: जी साईं केरु पिया ॻाल्हायो सराड़ी खां?
3: मरी
1: जी अदा, छा सवालु आहे डॉक्टर साहिब लाइ?
3: साईं मुंहिंजी चाची आहे, सोजी बि आहे।
1: किथे सोजी अथसि दादा?
3: साईं सॼे जिस्म ते।
1: अच्छा।
3: ऐं ॿियो हथ में ख़ारिश घणो माना थियसि थो?
1: हथनि में ख़ारिश आहे ऐं सोजी आहे।
3: जी हा।
1: अच्छा कॾहिं खां वठी तकलीफ़ आहे?
3: साईं हिले टाइम थी आ 3 4 दिन थी आ।
1: अच्छा पेशाब वगैरह ठीक आ?
3: हां साईं पेशाब सही आ।
1: ठीक आ एफएम तो डॉक्टर साहब बताइन था जी। डॉक्टर साहब
0: साईं सजे जिस्म में सोज थन उंदी वडे में वडे मजा थी दिया है तो जिस्म में रक्त जो घट थी वजन उन्हें करे सोज थी वी खास कर हथन ते पेरन ते फेस चिकल ते या सोज थी पौंदी है उनमें रत की टेस्ट थी रत घना पॉइंट आ रत खुटियल है तो रत लगन पेशेंट सही थी सके तो बाकी अवे ये चवंदम तो पेशेंट के रत लगने का बेहतर आ तो पे मुख्य दिखारे वनो थी सके।

ट्रेचार मेडिकल स्टोर जो त नवाबशाह मोड़ का जीअं निकिरंदे स्टेशन त पर शुरूआति इन्हनि टिनि मेडिकल स्टोरनि खां थींदी आहे। नवाबशाह मोड़ ते हुसैन मेडिकल स्टोर अॻिते ईंदव, सिर्फ़ु तव्हांखे इहे टे मेडिकल स्टोर मिलंदा। ऐं उन टे मेडिकल स्टोर वटि पहुची विया सम्झो मूं वटि पहुची विया। या कंहिंखे चवंदव पार्क वारी घिटी कहिड़ी आहे, टैंकी वारो पार्क आहे असां वटि मशहूरु आहे, पार्क वारी घिटी मशहूरु आहे, हिते हुते पहुची विया, हुते पहुची मूंखे कॉल कंदव, अव्हांखे पाण मां असां मिली वेंदासीं। हुते पहुची बि ॾिसंदव साम्हूं निम जो वणु किथे लॻल आहे, हवा रोड स्टेशन रोड ते निम जो वणु हिते लॻल आहे, निम जे वण ते पहुची विया, हेॾां पोइ ॾिसंदव मुंहिंजी क्लाइंट ॾिसण में अची वियो। माना ॿुधाइण कुझु कुझु शयूं ॿुधाइण इन करे ॿुधायां पियो त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि असांजा ॻोठ वारा, हुननि खे इहा निशानियूं जल्दी मिली थी वञनि, इन करे मां खोले सम्झायां पियो। प्रोग्राम में आख़िरी तरफ़ हलंदासीं पैगाम जी तरफ़। पैगाम में वञनि त असां इहो ई चवंदासीं अॼु खां प्रोग्राम में असां बीमारी जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं। उन बीमारी में जेका मूं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं बिज़नेसमैन जे हवाले सां, बिज़नेसमैन जे हवाले सां त उनमें सभई अची था वञनि। लाज़मी न आहे त जेको दुकानदार आहे उहा बिज़नेसमैन आहे। बिज़नेसमैन जो मतिलबु इहो आहे त जेको कारोबार करे पियो, कारोबार वकील आहे त ज़री ॻाल्हि आहे, उहो पंहिंजो रोज़ी रज़क जे लाइ वञे पियो त उहो बि कारोबार में शुमारु आहे। त सभई कारोबार में शुमारु थी वञनि। डॉक्टर सां उहा बि रोज़गार लाइ वञनि पिया, कारोबार आहे। घर वेठा आहिनि त उहा बिज़नेसमैन कोन्हनि, उहा कारोबार कोन्हनि। त उहा कारोबार में सभई सभिनीनि सां इहे मामला थींदा आहिनि। शागिर्दनि स्टूडेंट्स आहिनि उहनि में नर्सरी क्लास खां वठी यूनिवर्सिटी ताईं उहा सभु स्टूडेंट्स आहिनि, उहा सभई इन कैटेगरीअ में शामिलु थी सघनि था। त इन करे मूं वर्ड वरितो कारोबार, बिज़नेसमैन या शागिर्द, इहे ॿ वर्ड मूं इस्तेमालु कयो छो त इन में कंहिं उमिरि जो नालो न ईंदो, बाबा हिकिड़ो साल ॿ साल न उमिरि न ईंदी हिन में। ऐं इन में का बि तव्हां मर्द औरत इन में सभई अची वेंदा, उमिरि वारा बि सभई अची वेंदा। ऐं उन खां अलावा कारोबार वारा टोटल जेका कारोबार आहे उहा सभई इन में वर्ड में हिकिड़े वर्ड में अची था वञनि। बिज़नेसमैन सभई शामिलु थी था वञनि, शागिर्द में सभई शामिलु थी था वञनि, कोई स्कूल वारो, को कॉलेज वारो, को यूनिवर्सिटी वारो, ऐं जेका पढ़ाइनि पिया उहा सभई इन में शामिलु थी था वञनि। इन इहा शयूं सभिनीनि सां कंहिं न कंहिं सां थींदियूं आहिनि, उन में परेशान न थियणो। का तकलीफ़ थिए थी माउ पीउ नंढा आहिनि त माउ पीउनि खे ॿुधाइनि त उहा असां वटि वठी अची सघनि था। असां पेशंट सां पाण डिस्कशन कंदा आहियूं त क्लास में वञो था तव्हांखे तकलीफ़ छा थिए थी। माना हिकिड़ी मिसाल ॾियां पियो त माना तव्हां सम्झी वञो त सभिनीनि सां ॻाल्हि कहिड़े क़िस्म सां टेकअप थींदो आहे, त उन में असां पेशंट सां पुछंदा आहियूं मिसाल तौरु। स्टूडेंट आहे क्लास में वञे पियो त टीचर चवे पई त हीउ ब्लैक बोर्ड जे तरफ़ अचे, छो त हुते ब्लैक बोर्ड चवंदा आहिनि त ब्लैक बोर्ड जो या स्टेज ते अचो ईअं सम्झो, त इहा सवाल जो जवाबु हिन बोर्ड ते मूंखे लिखी ॾियो। त पेशंट उनखे यादि बि आहे, राति उहो यादि बि करे आयो, पढ़ी बि आयो, हीअं स्कूल में बि पढ़ी वियो आहे, रिपीट करे वियो आहे, पर हुते बोर्ड ते वञी डगमगाइजी वियो, ग़लति लिखी वियो अल्फाज़ अॻिते ॿुधी करे, छा आहे हेज़िटेशन हिनखे चवंदा आहियूं। त इन में इलाजु आहे, इहा शइ सभु ख़तमु थी सघे थी। एक्टिव अहिड़ो पेशंट, एक्टिव तव्हांजो ॿार अहिड़ो थी वेंदो त पेशंट तव्हांजा जेका टीचर्स आहिनि उहा इहा चवंदा त हीउ छोकिरो माशाल्लाह पढ़ाई में सुठो आहे। कमज़ोरी ॾिसो न, असल में ॻाल्हि छा आहे, पढ़ाई पुठिते छो पई वञे, कारोबार पुठिते छो थो वञे, उन में वजह ॻोल्हियो, थोरो गौर कयो पंहिंजे पाण ते सुकून सां ॾेई। अवां सम्झी वेंदव त असांजी कमी हिन ते आहे, असां हिन कमी खे पूरो कंदासीं इनशाला, असां अॻिते वधण जी कोशिशि कंदो। बाक़ी जेको आहे महिनत करनि हर कम में, लाज़मी न आहे त डॉक्टरीअ में, हर कम में महिनत करनि असांजो कमु आहे, सिलो ॾियणु अलाह जो कमु आहे। नियत सां, साफ़ नियत सां महिनत कंदव त तव्हांखे कामयाबी ज़रूरु मिलंदी। अलहमदिल्ला असांजी नियत साफ़ हुई त चार पंज साल असांखे FM थी चुका आहिनि, अवां सां गॾु होम्योपैथिक इलाजु कंदे कंदे थी चुका आहिनि, अलाए केतिरा पेशंट हुआ, केतिरा माण्हू हुआ उन्हनि जे नासूर, अहिड़ी ख़तरनाक बीमारियूं जेको इलाज ई न पियो थी सघे, त उहा अलहमदिल्ला अलाह जे हुकुम सां तयारु थी विया। होम्योपैथिक जी दवाउनि कोशिशि कई, दवा टाइम ते वरितई, एहतियात परहेज़ कई, अॼु बि ख़ुशहाल आहिनि। ऐं असां बि ख़ुशि थींदा आहियूं जंहिंमें ख़बर पवंदी आहे यार उहो पेशंट दवा वठी वियो त आयो छो न, साईं उहा तयारु थी विया त बसि पोइ असांजो तयारु थी विया न बसि हिते ई असां ख़ुशि थी था वञूं। अचनि न अचनि उहा ख़ैरु आहे, तयारु हुजनि, बीमार न हुजनि, ईअं न थिए त दवा खाधी को तकलीफ़ त आहे ऐं पंहिंजो इलाजु न करणु मुकमल, त इहो थोरो दुखु ज़रूरु थिए थो। त इन लाइ इलाजु मुकमल करायो, बीमारी आहे, तकलीफ़ आहे, त उन्हनि सभिनी जो होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में इलाजु मौजूदु आहे। त सामिन प्रोग्राम में असांजी कोशिशि रही आहे कुझु शयुनि ते गौर करण जे लाइ, त जीअं इन गौर ॻाल्हियुनि ते गौर कजो। सुभाणे आचार आहे क्लिनिक खुलियल हूंदी, अची सघो था सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। मोबाइल नंबर मुंहिंजो ज़रूरु यादि रखिजो 0300।

0: सतावीह 98 89 84 84 7 63 7 6 3 इहो नंबर असां यादि रखिजो, अचो पिया कॉल हणो बाबा, नंबर लिखी छॾियो, असां अचूं पिया, ताकी अचण में वञण में तव्हांखे तकलीफ़ न थिए, टाइम न लॻे, तव्हांजो टाइम बची सघे। फ़िलहालु मूंखे इजाज़त, मिलूं था सुभाणे क्लीन ते, अलाह ख़ैरु कंदो ऐं रहण ॾियो इजाज़त, अलाह निगहबान।
1: जीअं समीन मूंसां गॾु हुआ सकरनि जा मशहूरु ऐं मारूफ़ होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह साहब वापिस्ता आहिनि। डॉक्टर साहब माहिर अमराज, नक कन गलो, पुराणो नज़लो निछू, जोड़नि जो सूर, मथे जो सूर, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, तली जो वधण, जिगर जा मर्ज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज़, फालिज, खंघ, TB, हेपाटाइटिस BC, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। जुमो सुबुह जो 9 खां 12 वॻे ताईं ऐं बाक़ी 6 ई ॾींहं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक खुलियल हूंदी। नोट सिर्फ़ दवा स्टोर त डॉक्टर साहब वटां मिलंदी, छो जो होम्योपैथिक दवाऊं आहिनि उहे डॉक्टर साहब वटि स्टोर उते मौजूदु आहे। समिन वक़्त जो अहसासु प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि, सिहत जो राज़ होम्योपैथिक साण जो बि वक़्तु पुॼे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। जॾहिं बि दुआ लाइ हथु खणो, पंहिंजे मेज़बान सलीम अहमद सरकारी खे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो। ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो, ॿिए प्रोग्राम में हूंदुसि अवां सां गॾु। तेसीं ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु, अलाह वाही अलाह निगहबान। जेॾां पेर तेॾां ख़ैरु ख़ैर।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के चइन ॾींहनि जे दौरे जे पहिरें मरहले में हांगज़ू पहुची वियो। वज़ीर-ए-आज़म जी हांगज़ू शहर में चीनी सूबे ज़ीजियांग जी पार्टी सेक्रेटरी सां मुलाकात। मिस्टर वांग हाउ वज़ीर-ए-आज़म के सूबे में अचण ते भलीकार चयो। वज़ीर-ए-आज़म पारां चीन जी ज़ीजियांग जे तरक़ियाती मनसूबनि जी साराह। शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान सूबे ज़ीजियांग सां सहकार खे हथी ॾियण जो ख़्वाहिशमंद आहे। सूबाई सतह ते सहकार पाक चीन लाॻापन जो अहम थंभ आहे। सनअती सहकार सी पैक फेस टू खे अॻिते वधाए माहौलियाती तहफ़ुज़ आला मयारी मुआशी तरक़ी खे अॻिते वधाए सघिजे थो। वज़ीर-ए-आज़म दौरे दौरान चीनी सदर ऐं ॿियनि सां अहम मुलाक़ातूं बि कंदो।

हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इख्तियारन पारा कौमी विर्से पक्के किले से हथचराद जारी। पक्के किले की दीवार से गड गैर कानूनी जानायल दुकान एचएमसी तरफा मुबैना मंथली वटन जो इंकशाफ। गैर कानूनी दुकान के मालिकन का मंथली वसूल थे निशानदेही से आर्कियोलॉजी खातों हरकत में आयो। आर्कियोलॉजी अमलदारन पारा गैर कानूनी दुकान ता माहवार रकम वसूल कदर एचएमसी मुलाजिम खिलाफ कार्रवाई लाए 31 मार्च से मेयर के खत लिखो। खत में एचएमसी मुलाजिम माजिद तरफा गैर कानूनी मंथली गड करण बाबत निशानदेही कई वही। पोड़ा 2 महीना गुजरण बावजूद एचएमसी के मेयर ऑफिस तरफा को एक्शन न थो। पक्के किले की दीवार से गैर कानूनी दुकान के रेगुलर करण वारी जारी थियल चालान जो भी इख्तियार नोटिस न वरतो। गैर कानूनी दुकान के नुसरत बाजार जो नालो रही रेगुलर करण की कोशिश भी जारी। एसटीपी चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी शहीद देवट के अगवा में कराची वासी अमाद के मुलविस होने शक जाहिर कर छो। संदस नालो ईसीएल में दाखिल करण जो मुतालबो। डॉक्टर कादर मक्सी केटीएन न्यूज से गालाइंदे शहीद देवट की बाजियाबी लाए कोशिशों वठण की बुनियादी जिम्मेवारी सिंध हुकूमत की है। शहीद देवट जो 2 महीना पहले दिल जो बाईपास थो है संदस जिंदगी के खतरो है। शहीद देवट के कुछ डी पे मुबैना तौर बलोचिस्तान में अगवा किया वो हो। नवाबशाह में एफआईए की कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस एसएसपी ऑफिस सांगड़ जो अगोणो अकाउंटेंट गिरफ्तार। एफआईए एसएसपी ऑफिस सांगड़ अगोड़े अकाउंटेंट गुलाम सरवर जा

0: सिंध जी मुख़्तलिफ़ शाखुनि ऐं वाहनि में पाणी कोट सबबि फसल सुकण लॻा। मीरपुर ख़ासि विची रोड
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जी FM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान सा या त सुठी डील कंदासीं या इन्हनि खे ताईं फ़ैसिलो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त चाकड़ी कंदड़ ईरान अमरीका विच में मुआदे खे हतमी शकल ॾियण जे वेझो पहुची विया आहियूं। हर रोज़ ॻाल्हियुनि जो अमल बहितर थी रहियो आहे। उमीद आहे मुआदो ईरान खे एटमी हथियार हासिल करण खां रोकींदो, सिर्फ़ कंदुसि जेको अमरीका चाहे थो। वॾे ख़बरू इदारे राइटर्स मूजिबि अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप अॼु पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर ऐं मिस्र जे सरबाहनि सां टेलीफोनिक राब्तो कंदो। ईरान सां माहिदे ऐं ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशहूर ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जी FM 90.8।